0: 9914 and take control of your financial future.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डैनियल लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो।
6: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

How are you all doing today? I am doing absolutely fine. This is the Be the Hippie joining you on Funnyja Radio 104.9 FM for another beautiful Thursday. Yes! और दो दिन बाद वीकेंड शुरू होने वाला है. Yes! Guys, आपका थर्सडे कैसा गया? मेरा तो बड़ा अच्छा गया. I had such a chill day. I was kind of like my day off, not from the radio, but like my other, like, you know, teaching stuff. So, मैं बड़े time बाद बड़े अच्छे से gym गई. I worked out and then I met a friend. By the way, did you know Instagram is a really good source in case you want to make some friends? You can connect with a lot of people and you never know who becomes one of your really good friends. So, guys, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाओ. सोशल मीडिया हैज़ बिन गिवन टू अस नॉट जस्ट टू स्क्रोल ऑन अदर पीपल्स स्टोरीज एंड वॉट देयर लाइफ इज़ डूइंग, बट ऑल्सो टू मेक कनेक्शंस. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ सोशल मीडिया, यू नो. इट्स टू बी सोशल. सो इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट अदर पीपल एंड बींग अनसोशल, देन दैट्स नॉट रियली वेरी सोशल. टू मेनी सोशल्स इन दिस वन सेंटेंस. हाउएवर, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड.

यारो दोस्तों, क्या हाल है भाई। थर्सडे आ चुका है। अपने अपने वीकेंड के प्लान्स बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए हैं तो अभी भी एक दिन बाकी है। डोंट सिट ऑन अ सैटरडे इवनिंग एंड वंडर कि अरे यार आज मैं क्या करूं। ओह नो, आई हैव नथिंग टू डू। वेल, मेक अ प्लान, गो ऑनलाइन, लुक अप सम सोर्सेस, फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग इन डैलस, इन DFW, एंड जस्ट मेक योर प्लान्स गाइज। क्योंकि मतलब वीकेंड तो वैसे हर हफ्ते ही आता है, लेकिन पता नहीं आपका मूड हर हफ्ते आएगा कि नहीं। सो इफ़ यू आर इन अ गुड मूड देन यू शुड डेफिनेटली डू इट। ओके, दूसरी चीज़, आई हैड द मोस्ट अमेजिंग आफ्टरनून टुडे। क्योंकि पता है क्या हुआ टुडे, दिस इज़ जस्ट अ शेयर टाइम फॉर मी। आई नो सम ऑफ यू डोंट वॉन्ट टू लिसन टू माई स्टोरीज, बट यू नो वॉट, इट्स ओके। मैं शेयर नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? आई हैव दैट्स दैट्स व्हाट आई डू। ओके, सो टुडे आई हैड द मोस्ट अमेजिंग आफ्टरनून। आई एक्चुअली मेट अ फ्रेंड ऑफ माइंड दैट आई हैव बिन मीनिंग टू मीट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और पता है हमारी बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक ना मैंने रील देखी इंस्टाग्राम के ऊपर लॉन्ग टाइम अगो, एंड दिस वुमन हैड शी हैड पोस्टेड सम रील, एंड आई एम अ दिल्ली वाली। दिल्ली वाले वैसे नहीं मिलते हैं। मतलब आई थिंक दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के निकलते नहीं है। जो निकल जाते हैं दे क्रेव दैट कनेक्शन कि भाई कोई हमारे शहर से हो जाए, कोई हमारी तरह बात करने वाला हो। क्योंकि हम तो बिना गाली के वैसे भी नहीं बात कर सकते हैं, और हम लोग को लोग वैसे ही बोलते हैं कि अरे यू आर सो रूड, यू आर अ दिल्ली वाली, बट यू नो रियली वी आर नॉट, दिस इज़ हाउ वी टॉक। However, it's really hard to connect with other people sometimes, which we still do, but jo bhi hai, it always feels good to meet somebody from your city. Then you have so many things to catch up on, right? You know what I'm talking about. So, I saw this reel many months ago by this woman. She had posted somewhere in Chicago. कहते हैं दिल्ली वाले कहाँ हैं भाई, मैं तो शिकागो में हूँ, मुझे यहाँ पे एक भी दिल्ली वाला नहीं मिल रहा है। Where are the दिल्ली वालाज? एंड मैंने कहा सेम स्टोरी, मैं डैलस में हूँ बड़े सालों से, मुझे तो कोई भी दिल्ली वाला नहीं मिल रहा। बट ठीक है, आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट इट वुड बी नाइस टू रिलेट टू समवन फ्रॉम माई ओन सिटी। तो गेस व्हाट गाइज, व्हाट हैपेंड, इतने सारे कमेंट्स आए ना मेरे उस एक कमेंट के नीचे। मेरे खुद की वीडियोस पे इतने कमेंट्स नहीं आए जितने मेरे कमेंट के नीचे कमेंट्स आ गए। एंड देन सो मेनी पीपल कनेक्टेड विद मी। मैंने कहा चलो यार एक दिल्ली वालों का ग्रुप बनाते हैं। तो मैंने एक ग्रुप बनाया, एंड देन आई हैपन टू मीट वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम दैट ग्रुप, एंड यू नो वी कनेक्टेड। और हम लोगों ने ऐसी बातें बातें करी, चाय वाय पिए, समोसे वमोसे खाए, पनीर पकौड़े शकौड़े खाए, वाह क्या मज़ा आया। सो सोशल मीडिया कैन बी अ रियली गुड सोर्स इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली, है ना। नहीं तो फिर सोशल मीडिया में डूम स्क्रोलिंग करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज़ नॉट हेल्थी। बट इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट टू योर एडवांटेज एंड मेक कनेक्शंस एंड बी सोशल, देन इट इज़ एन अमेजिंग सोर्स। एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद टुडे।

कोई छोटा मोटा चोर उचक्का लगता है सब। पैसे रिवॉल्वर सब छोड़ के भाग गया डर के मारे। कुछ चीज मिसिंग है साहब।

Hello everyone, we are back and अभी थोड़ी देर पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर रेगुलर लिसनर्स, वन ऑफ माय रेगुलर लिसनर्स, रुखसाना जी, हु रिसेंटली लॉस्ट समबडी वेरी क्लोज टू हर. एंड आई होप यू आर एबल टू यू नो फाइंड सम पीस रियल सून. And I hope wherever this person is, I hope they can also find their soul, can also find peace. This is a song that goes out from me to Ruksana Ji. Please take care. I know this is a difficult time, but we are all here with you.

0: भाई आई होप रुखसान जी यू फाइंड सम पीस एंड सोलेस इन दैट सॉन्ग. हाउएवर गाइज, अगर आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं देन योर ड्रीम माइट बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज, जो कि मैं एक बार बोल चुकी हूँ ऑलरेडी. सिंस 1998 दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन. स्मूथ एंड स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन फॉर योर नीड्स. चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर है.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
3: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया.
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया.
5: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.senadainc.com today.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: ये तारा वो तारा हर तारा.
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
14: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
13: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
14: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
13: इंडिया तक.
14: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
12: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
12: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
16: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience. With CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
4: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
12: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
4: Register free now at meditation.funasia.net.
0: I saw this really funny joke today, by the way, which says, this woman says, call me an ambulance. And the guy says, sure, you're an ambulance. Did you get it? Usne bola, call me an ambulance. Mane, mujhe ambulance bulao. Ye nahi ki mere liye ambulance bulao. Sometimes English is a really funny language. Thoda kya bolte hain, badi sari meaning ho sakti hai. Lekin break mein jaane se pehle, remember we were talking about dream home mortgage. To guys, jo sun rahe hain, उनके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अपग्रेडिंग है या रीफाइनेंस कर रहे हैं, देन यू शुड स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे. कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. गाइस, सपनों से याद आया, वी ऑल वांट टू अचीव समथिंग, अ लॉट ऑफ अस डू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन द वर्ल्ड. मुझे तो मेरे तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत दूर तक हैं. कोई लोग मुझे कहते भी हैं कि यार तुम बहुत दूर के सपने देख रहे हो, यू आर थिंकिंग टू मच ऑफ लॉन्ग टर्म. उतने दूर के सपने मत देखो, कम बैक टू अर्थ, थिंक शॉर्ट टर्म, इट्स मोर सेटिस्फैक्टरी. बट यू नो व्हाट, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु थिंक्स ऑलवेज ऑलवेज थिंक्स फॉर द लॉन्ग गेम. यू नो शॉर्ट टर्म गोल्स आर ग्रेट टू गेट दैट डोपामिन रश एंड ऑल दैट, लेकिन इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट यू गॉट टू कीप दैट लॉन्ग पिक्चर इन माइंड. देन आप कभी गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ, मेरे साथ एटलीस्ट ये होता है कि एज सून एज आई अचीव दो शॉर्ट टर्म गोल्स, माई माइंड एंड माई बॉडी जस्ट फील्स लाइक हो गया, चलो डन. यू नो यू वी गेट इन टू द रिलैक्स मोड. बट इफ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन, यू गॉट टू थिंक लॉन्ग टर्म. आई मीन आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर यू गाइज, इट डेफिनेटली वर्क्स फॉर मी, राइट. तो उसी से रिलेटेड, टोटली अनरिलेटेड, ये गाना सुनते हैं.
6: Hi guys, आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो मेरे हीरो करण सिंघानिया, जो कि आज बहुत बड़े पॉप स्टार हैं, उन्होंने ये गाना पहली बार यही गाया था.

भाई ब्रेक में जाने से पहले हम लोग सपनों की बातें कर रहे थे, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम होम मॉर्गेज एंड मेरे सपने भी. सो दैट सॉन्ग वॉज डेडिकेटेड टू मी बाय धर्मेंद्र जी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट धर्मेंद्र जी एज इन द एक्टर, बट धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल एंड थैंक यू फॉर यू नो शेयरिंग लिटिल बिट ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड. वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. However, guys, the reason I was talking about sapne is because I'm sure we all dream of doing big things in life or small things in life, but we do dream of some things in life, right? Vaise hi, did you know

गाइज, आई डोंट थिंक उसे आपका चेहरा याद है. पता है क्यों? क्योंकि आपने उसके दिल पे इम्पैक्ट ही नहीं किया. पता है, गर्ल्स गेट इम्प्रेस्ड विद वॉट, लाइक प्रेजेंस एंड लाइक समथिंग नाइस, सम ग्रैंड जेस्चर्स. तभी हमारे बॉलीवुड में ना सारे सिनेमा में यही करते हैं लोग. भाई, वी गर्ल्स लाइक इट. ओके, इसीलिए यू शुड गो एंड हेड डाउन टू श्री कृष्णा ज्वेलर्स. लेकिन ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी. फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग डायमंड्स, इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोल की कलेक्शंस, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स. इसीलिए उसको अपना चेहरा मत भूलने दो यार. याद दिलाओ कि भाई, वो जो अंगूठी तुम्हारे हाथ में है ना बच्चू, वो मैंने दी है, याद है ना? दे आर वेलकमिंग यू नाउ टू देयर न्यू लोकेशन एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, श्री कृष्णा ज्वेलर्स. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, अरे ज्यादा बोल दिया, श्री कृष्णा ज्वेलर्स. एक बार और ट्राई करते हैं, श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश मोमेंट्स सिंस 1967. समटाइम्स द इजिएस्ट ऑफ द वर्ड्स कैन जस्ट लाइक रोल ऑफ योर टंग एज इफ इट्स सच अ हार्ड वर्ड. नहीं, आई डोंट, है ना, आपको नहीं लगता? तो गाइज, डोंट लेट हर फॉरगेट योर फेस और द जेस्चर यू डिड और द रिंग यू गेव. गो टू श्री कृष्णा.

0: फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर में 30 सेकंड के अंदर अंदर ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन आप यहीं पे बने रहिए क्योंकि और भी बहुत ही मज़ेदार गाने होने वाले हैं. लेकिन जाने से पहले गाइस, तनिष्क इज आल्सो ऑफरिंग सम काइंड ऑफ डील विच इज डायमंड्स आर जस्ट फॉर एवर, स्पेशली ड्यूरिंग तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. इंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, मेकिंग 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
5: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
6: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल. 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 11:30 AM टू 3 PM. दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग.
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, Omar Khwaja.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: बेटा, 95% आए?
12: हाँ मम्मी.
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
13: मेरा?
11: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
13: वो
14: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
15: आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
17: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
16: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
18: Samasya ka pakka samadhan.
16: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
19: Zindagi ek rangmanch hai.
2: Aur ghar dhoondna sirf interval. Asli climax to tab hai jab closing smooth ho, paperwork clear ho aur chabi aapke haath mein ho. Parda गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
3: कॉल 972-897-1530. firstunitedtexastitle.com.
7: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
4: First
12: sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
7: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
0: And we are back, guys. So you know what time it is. It is 8:04 on the clock. और आपको पता है 8 o'clock को क्या होता है? That is correct. हमारा giveaway होता है. Pam pam. लेकिन आप ये तो पूछ रहे थे कि कई लोग मुझे अभी call करके बोल रहे हैं, पर आप हो कौन भाई? Guys, आप अभी तक मेरा नाम नहीं जान पाए. मैं हर हफ्ते तो आती हूँ, हर रोज ही आती हूँ, ऑलमोस्ट मंडे टू थर्सडे. दिस इज इबी द हिप्पी इन द हाउस एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम एंड दिस इज माय शो एन इवनिंग इन फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले एन इवनिंग इन डैलस एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्ले आवर गिव अवे क्वेश्चन. अभी हमारा गिव अवे थोड़ा सा अलग हो गया है कल से, क्योंकि मेरा मूड हुआ एंड व्हाई नॉट. ओके, जब मूड, हमेशा अपनी दिल की बातें सुननी चाहिए. मेरे दिल ने बोला भाई ये साउंड्स लाइक वाला गेम तो हमने बड़ा खेल लिया, अब कुछ नया खेलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इस हफ्ते हम खेल रहे हैं कंप्लीट द डायलॉग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स. तो वी आर गोइंग टू टेस्ट योर बॉलीवुड नॉलेज. ठीक है, लेकिन भाई बॉलीवुड नॉलेज ही नहीं टेस्ट करेंगे हम आपकी बॉलीवुड फैशन भी टेस्ट करेंगे. दैट इज राइट, आप कितने बॉलीवुड के कितने कितने कितने बड़े फैंस हो वैसे बोलना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या है गेम? लेकिन गेम बोलने से पहले मैं आपको ये तो बोलूं कि आप जीत क्या सकते हो. यू कैन विन ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा क्वेश्चन. ओ, फन पिज्जा किचन. फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग अ क्वेश्चन. फन पिज्जा क्वेश्चन, वेल टेक्निकली दिस इज अ फन पिज्जा क्वेश्चन. लेकिन गाइज, बिफोर वी गो इनटू दैट, Fun Pizza Kitchen has launched a brand new Mexican-inspired pizza lineup. और ये सिर्फ pizzas ही नहीं हैं. They are a full-on flavor burst from the fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco, seafood-packed senor camarón and the loaded mucho macho pork. Every bite is bold, exciting and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen in Frisco or the Colony. And taste the obsession for yourself. New flavors, new obsession. And for more details, you can log on to funpizzakitchen.com. But remember, this giveaway is only valid at Fun Pizza Kitchen in Frisco. Okay? Only in Fun Pizza Kitchen in Frisco. So guys, without further ado, let us play. So game simple hai. I will tell you a dialogue, aadha adhura. आपको उसको पूरा करके देना है. ठीक है, ये डायलॉग बहुत इजी है, इसमें कोई भी जीत सकता है. यू डोंट नीड एनी म्यूजिकल नॉलेज. ऑल यू हैव टू डू इज नो योर बॉलीवुड रियली वेल. ओके, एंड दिस इज सच एन आइकॉनिक डायलॉग, आई एम श्योर यू गोना गेट इट. ओके, तो द डील इज दो, आप जब मुझे कॉल करके डायलॉग बोलेंगे, ऐसे बोरिंग करके डायलॉग नहीं बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फेवरेट हूँ, रोबोट जैसे नहीं बोलेंगे. आपको बोलना पड़ेगा मैं अपनी फेवरेट हूँ, जैसे गीत ने बोला था यार, वैसे करके बोलना पड़ेगा. ठीक है, तो वो डायलॉग नहीं था बाय द वे. तो अगर आप कॉल कर रहे हैं, प्लीज होल्ड ऑन, पहले क्वेश्चन तो सुन लो भाइयों. मेरे को कॉल्स ऑलरेडी आ रही है. तो क्वेश्चन, हियर वी गो. आई कैन टॉक इंग्लिश एंड ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो द डायलॉग इज आई कैन टॉक इंग्लिश एंड एंड में खत्म होता है अ वेरी फनी लैंग्वेज. सो यू हैव टू से इट विद द राइट इमोशन. एंड लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉलर. नो, ओके, नेवर माइंड. एंड लेट्स सी हू गेट्स दैट वन. हाय फनीशा रेडियो, कैन यू हियर मी?
13: Yeah, he just gives you the air for a guy to the Fun Pizza in the Colony, but the Colony is a store, is a closed. It's out of business.
0: Oh, good to know, good to know. अभी हम लोग गेम खेल रहे, तो आप मुझे बाद में बताइएगा. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल गाइस. हाय, कैन यू हियर मी?
8: यस, आई कैन.
0: ओके, तो पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन कंप्लीट द डायलॉग. बिल्कुल एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ेगा.
8: ओके, माय नेम इज मिहिर.
0: मिहिर, ओके, गो फॉर इट मिहिर.
20: I can talk English, I can walk English, I can speak English, because English is a very funny language. Their barren becomes barrow becomes barren, and barren becomes barrow because their minds are very narrow.
0: Very nice, but there was one word or one line in this which was a little bit wrong. You are so close though. Do you want to give it another try?
20: I can speak English, I can talk English, I can walk English.
0: No! वही तो गड़बड़ है. वो स्पीक नहीं था उसमें, स्पीक नहीं था, बट कोई बात नहीं, विल टेक अ डिफरेंट कॉलर. बट दैट वाज अ रियली गुड ट्राई. यू आर सो लाइक 90% ऑन इट. ऑलराइट. हाय, कैन यू हियर मी?
21: हेलो
0: हेलो, कैन यू हियर मी?
21: या आई कैन हियर यू.
0: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम.
21: माय नेम इज टीना.
0: टीना?
21: यस.
0: ओके टीना, गो फॉर इट. पूरा डायलॉग बोलना है, बिल्कुल लाइक वर्ड टू वर्ड विथ सम एक्सप्रेशन. ओके, गो फॉर इट.
21: ओके, पूरा वर्ड टू वर्ड बोलना है कि एक दो लाइन चलेगी?
0: नहीं, पूरा वर्ड टू वर्ड बोलना है. पूरा वर्ड टू वर्ड बोलना है.
21: ओके, जितना बनता उतना बोलती हूँ.
0: अच्छा, ट्राई करो, कोई बात नहीं. ट्राई करने में क्या मतलब, ट्राई करने में कुछ नहीं लगता. चलो, गो फॉर इट.
21: आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन सो इंग्लिश, etc, etc, I think.
0: so close, but it starts, that you started right, but it was not exactly that. So we are going to go to the next caller, but good try.
21: Yeah. Thank you.
0: All right, guys, we have our next caller. Aap apna naam bataiye pehle to.
22: So we are going to go to the next caller, but good try.
0: Hello.
23: Hey, hi, this is Ajay
0: Riyar. Can you tell me your name again?
23: Ajay Riyar.
0: Okay, go for it.
23: Hey, Arey Bauji, I can talk English, I can walk English, I can laugh English, I can run English, because English is such a funny language.
0: I like the addition of the ha ha ha ha, but I don't think I can run English was the thing. उसके बाद भी कुछ और था, but that was a good try. So I'll have to go to the next call. I like the laugh. All right, guys, we have our next caller. Go for it.
24: Yeah, hi.
0: Hi, tell me your name.
24: Yeah, this is Arya.
0: Arya, go for it. Did you win a giveaway yesterday, Arya?
24: Yes, I did.
0: We have to go to a different caller. So sorry.
24: Okay. No worries. Thank you.
0: Guys, the question is still open. Hi, can you hear me?
24: Yeah.
0: Okay, go for it. Tell me your name and then go for it. Yeah.
24: Hi, this is Praveen. I think the answer is I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. Here, Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very narrow.
0: Wow! That was the exact one. Woohoo! You have won the giveaway, Praveen. Talia!
24: Thank you.
0: ओके, तो प्रवीण आप जीत चुके हैं गिव अवे. एंड गाइज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स प्ले द सॉन्ग. प्रवीण, स्टे ऑन द लाइन. आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन होल्ड फॉर लाइक 2 seconds व्हाइल आई प्ले द सॉन्ग, एंड देन आई टेक योर इन्फॉर्मेशन. ओके,
24: थैंक यू मच.
0: ओके गाइज, एंजॉय दिस ट्यून. वी विल बी राइट बैक.

यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रवीण जी फॉर विनिंग द गिव अवे. आज हमारा तालियों वाला म्यूजिक बजा नहीं तो आपको मेरी खाली तालियां ही सुनाई दी, लेकिन कोई बात नहीं, फीलिंग्स ज्यादा जरूरी है. तालियां तो मिलती रहती है, फीलिंग्स फीलिंग्स काउंट, चाहे तालियां मारे ना मारे, है ना? आपको क्या लगता है? नहीं तो भाई लोगों, मुझे अगस्त की ना बड़ी खुशी होती है. पता है क्यों? क्योंकि अगस्त में बहुत कुछ चीज़ें होती है. एक तो राखी होती है, राखियों में गिफ्ट मिलते हैं अपने भाइयों से. दूसरा, मेरा जन्मदिन भी आता है एंड ऑफ अगस्त, तो वहाँ पे और गिफ्ट मिलते हैं. तीसरा, इंडिपेंडेंस डे है, वहाँ पे किसी को कोई गिफ्ट नहीं मिलता, लेकिन हम आज़ादी की गिफ्ट को इंजॉय करते हैं, है ना? क्योंकि भाई, अगर आज़ाद नहीं हुए होते तो आप और मैं शायद यहाँ अमेरिका में नहीं होते, हम किसी ब्रिटिशर के जूते घिस रहे होते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, व्हाट एम आई सेइंग, फॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं हुआ और हमें आज़ादी मिल गई. तो हमें ज़िंदगी ने आज़ादी वाली गिफ्ट दी है ना? वाह वाह, क्या बात है, शानदार प्रदर्शन. पता है, जब मैं इंडिया में थी, मेरी कॉलोनी में ना हर 26 जनवरी को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे मेरे कॉलोनी वाले. वो नेबरहुड एसोसिएशन जो था, वहाँ पे हम लोग फ्लैग होस्ट करते थे और सबको समोसे खिलाते थे सुबह सुबह, लाइक सुबह 8 बजे होता था, और सब जन गण मन गाते थे और सारे जहाँ से अच्छा गाते थे. वाह, क्या शानदार प्रदर्शन है. तो गाइज, 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे से याद आया, सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT, यानी इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास आनंद बाजार, 2026 ऑन सैटरडे 15 अगस्त फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कमर्शिया सेंटर इन फ्रिस्को. और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इट इज इनडोर्स, तो आपको तपती हुई गर्मी में धूप की गर्मी नहीं सेकनी पड़ेगी. आप AC में जाइए, आनंद बाजार का मजा उठाइए. एंड देर इज ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ शॉपिंग. एग्जैक्टली, तो अपनी फैमिली को लाइए, दोस्तों को लाइए, एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास आनंद बाजार 2026. एक बार और मैं बोल देती हूँ, 15 अगस्त को है, 2 बजे एट द कमर्शिया सेंटर इन फ्रिस्को. अभी मुझे वसीम जी, जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि वो तो जा रहे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है. तो मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी चीज़ करी आपने, पहले से ही डिसाइड कर लिया, 2 हफ्ते पहले से. एक्चुअली 2 हफ्ते नहीं, अभी एक ही हफ्ता है. तो गाइज, आप भी डिसाइड कर लीजिए अगले हफ्ते का प्लान, वीकेंड का प्लान आज ही बना लो, ठीक है? इस हफ्ते का बाद में देखना, अगले हफ्ते का पहले बना लो. तो मेक श्योर यू गो टू इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास के आनंद बाजार में. तब तक के लिए, अदिति जिंदगी से खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये गाना सुनो तुम. अदिति जो भी है, मुझे नहीं पता अदिति कौन है.

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: गाइज, समथिंग आइकॉनिक हैज हैपेंड इन इंडिया। आई डोंट नो इफ यू आर फॉलोइंग विद दिस न्यूज और नॉट, बट माय थिंग इज लाइक रिलेशनशिप, शादी वगैरह वगैरह और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इसके बारे में बात करती हूँ, मुझे बोला भी गया है इसके बारे में बात करो, तो हम करते हैं, ठीक है? क्योंकि न्यूज़ व्यूज़ आप सुबह के टाइम सुन लेते हो, अभी हम अलग चीज़ें बोलते हैं। तो बाय द वे, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पास्ड एज ऑफ August 2026, they have expanded the scope of section 498A. अगर आपको 498 नहीं पता, it is basically to protect women in like marriages and like domestic violence और वो वाली जो situation है, anything related to that, that is what is called section 498. तो section 498A के तहत of the Indian Penal Code, which is IPC, which is now section 85 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, they are now protecting women, not just in marriages, by the way, guys, but in marriage-like live-in relationships also. So, agar aap domestic cruelty mein aa gaye hain with a boyfriend or a partner jiske saath aap live-in kar rahe hain, ya fir you've somehow found yourself in a situation like that, you know, either by choice or without choice, I mean, we don't know, there's a lot of things that happen in this world, then that ruling now protects that also, even if you are not formally married, which means even if you don't have a formal legal court certificate, ki haan, notarized certificate ho gaya ki ye ye husband hai, ye wife hai, uske alawa bhi, you can be protected, those rules apply, to gai, India is also changing, America mein to bahut time se hi tha, कॉमन लॉ मैरिज भी बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, लिव इन रिलेशनशिप्स में भी रूल्स अप्लाई होती हैं, लेकिन चाइल्ड सपोर्ट लिव इन रिलेशनशिप्स में भी होती है, तो ये वाली चीज़ें अब इंडिया में भी आ गई हैं, विच इज़ क्वाइट कूल आई थिंक, बिकॉज द सोसाइटी इज चेंजिंग, अ लॉट ऑफ द यंग फोक्स आर चूजिंग टू नॉट गेट मैरिड सिंपली बिकॉज इट इज मच मच मोर हार्डर टू वॉक आउट जस्ट इन केस द रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट, सो पीपल आर एक्चुअली जस्ट नॉट चूजिंग टू गेट मैरिड एट ऑल, और वो लाइक दे डोंट रियली वॉन्ट हैव किड्स एंड ऑल दैट, एवरीबडीज ड्रीम्स हैव चेंज्ड. वुमेन कैन ऑल्सो नाउ इन्वोक डोमेस्टिक क्रूअल्टी लॉज इफ द रिलेशनशिप इज इन लाइक अ नेचर ऑफ मैरिज.

और वो लाइक दे डोंट रियली वांट टू हैव किड्स एंड ऑल दैट. एवरीबडीज ड्रीम्स हैव चेंज्ड. वुमेन कैन ऑल्सो नाउ इन्वोक डोमेस्टिक क्रूअल्टी लॉज इफ द रिलेशनशिप इज इन लाइक अ नेचर ऑफ मैरिज, ओके, विद ए क्लियर डेमोन्स्ट्रेटेड इंटेंशन टू मैरी. कैजुअल, टेम्प्ररी और ब्रीफ लिव इन रिलेशनशिप्स डू नॉट क्वालिफाई. मतलब आपको थोड़े टाइम के लिए साथ में रहना पड़ेगा. लेकिन ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी प्रूवन, ओके. ऐसे नहीं कि अरे मेरी मेरे पति ने, ही वॉज सो क्रूल, आज उसने मुझे पानी नहीं पिलाया. ऐसा थोड़ी ना होता है. तो मतलब आपको प्रॉपरली प्रूव करना पड़ेगा. एंड द कोर्ट एम्फसाइज दैट दिस लॉ कैन नॉट बी यूज टू सेटल पर्सनल डिफरेंसेज और पर्सनल स्कोर्स, एंड मैंडेटेड दैट एस्टैब्लिश प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट मस्ट रिमेन स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड. क्योंकि कई लोग क्या आता है ना, गलत इल्ज़ाम भी लगा देते हैं एंड ऑल दैट. तो आई थिंक दैट वॉज अ प्रिटी सिग्निफिकेंट रूलिंग इन टर्म्स ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी एंड द चेंजिंग रिलेशनशिप सिचुएशनशिप हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज डेज, स्पेशली इन इंडिया फॉर दिस पार्ट.

भाई देवडी की पारो तो अपनी शादी में ही डांस करने लग गई, और पारो का जो नया पति है वो देख रहा है कि अरे ये तो अपनी शादी में ही डांस करी है। लेकिन पता है सबसे फनी चीज क्या हुई, समबडी साइंड मी अप फॉर अ मैच मेकिंग सर्विस टुडे एंड आई डोंट नो हु दिस इज। आज मुझे मैसेज आया, आर यू लुकिंग फॉर अ हाई वैल्यू मैन, ज्वाइन द डायमंड क्लब मैच मेकिंग। भाई ना मैंने कोई डेटिंग ऐप पे ज्वाइन किया है पिछले 2 सालों में, मतलब आई हैवंट इवन ट्राइड गोइंग ऑन एनी काइंड ऑफ डेट और ऑनलाइन मैच मेकिंग सर्विस इन ए लॉन्ग टाइम। तो पता नहीं ये कहाँ से आ गया, कहता है यू हैव अग्रीड टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम आई डिजर्व लव, वाह मैच मेकिंग सर्विस। आई डोंट नो हु दीज पीपल आर और वाई दे गॉट माई नंबर और हाउ दे गॉट माई नंबर, बट यू नो वट, आई डू डिजर्व लव एंड आई डिजर्व लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई डोंट नीड अ मैच मेकिंग सर्विस, यू गाइज नीड टू एंजॉय दिस सॉन्ग।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
6: Front page ka to pata nahi, par tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
5: Kaise?
6: Page 3 eatery?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, last and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: Matlab great food, great drinks and great company, yani ki main.
7: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
4: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
5: गाइस, भाई आगे बढ़ने से पहले आप अपने दिल का ध्यान रख रहे हो या अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो? और अगर नहीं रख रहे हो तो रीच आउट टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बिकॉज दे आर गोइंग टू स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट फॉर अ फुल 30 मिनट्स. अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. आप जस्ट एक पेशेंट नहीं है एट पैशन हेल्थ, यू आर लाइक फैमिली. फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन, or for alcohol-related liver concerns, vitamin 12 deficiency, and more. Okay, everything is available at Passion Health. Schedule your appointment today, 214-666-6259, 214-666-6259. It is 9:05 on the clock, and I'm going to be here with you for just one more hour this whole week now. Uske baad main aapse Monday ko milungi, lekin abhi ek ghanta hai, to stick around. And this next tune goes out to Zimran. Thank you for introducing me all these really cool tunes that I don't know, Zimran. Zimran is, by the way, on point on his new Bollywood releases. Every time a new release comes, he's like, hey, can you play this song? Do you know the song is out? I'm like, dude, what's up? How do you know so much? It's pretty cool. Thank you.

Another interesting news that I just found that restaurants in Mumbai are actually deep cleaning everything. Like they are like really hyping up and deep cleaning and adhering to strict food safety raids laid by IS officer Tukaram Mundhe. Well, Mundhe ji ne, he's been I if I I'm hope I'm pronouncing the name correctly, but he's been going to all these restaurants and shutting them down because they are not adhering to the safety standards, safe food practices. So, matlab, a lot of restaurants are like really scared. By the way, restaurants are yaad aaya, guys. I don't know who's listening on air right now, but DFW really needs a Bengali food restaurant. Matlab, एक ही था यहाँ पे बहुत सालों पहले, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो भी एक्चुअली बैठ के खाने वाली रेस्टोरेंट नहीं थी, इट वॉज मोर लाइक अ केटरिंग सर्विस, बट वी रियली नीड ए ऑथेंटिक बंगाली फ्लेवर्ड, लाइक नॉट बंगाली फ्लेवर्ड, बंगाली फ्लेवर वाला रेस्टोरेंट जिसमें आप खाते हैं चिंगड़ी, मतलब प्रॉन की मलाई करी एंड ऑल ऑफ द यमी थिंग्स दैट वी हैव एंड द फिश फ्राई एंड ऑल ऑफ दैट. सो हु एवर इज एन इन्वेस्टर एंड अ रेस्टोरेंटर, प्लीज टेक माई वर्ड फॉर इट. आई कैन प्रोमिस यू सो मेनी पीपल विल कम. यहाँ पे DFW में ना कम से कम 5 दुर्गा पूजा होती है, तो प्लीज गो अहेड एंड मेक अ बंगाली रेस्टोरेंट बिकॉज ऑल ऑफ इज गोइंग टू सेल रियली वेल, बट यू हैव टू कीप अप द स्टैंडर्ड्स. हाँ,

Friends, that was Anjane by the iconic band from the early 2000s called Strings. Did you know that Strings ne Spider-Man ki jo second movie aayi thi, if I'm not mistaken, with Tobey Maguire, they also gave the soundtrack for that one. There was a English soundtrack and then there was a Hindi soundtrack for the Indian audiences. Isn't that cool? So, aage badhte hue, guys. Do you guys all know who Jay Shetty is? He's a very, very famous, like, spiritual guru. He talks about relationships. He talks about meditation. He talks about connecting with your inner soul. He's really famous. He has a lot of videos online and a really, really strong online presence. He gives these master classes and stuff. So today I came across this video where he says, you know, where he was being asked, do soulmates exist? Like, do you guys believe in soulmates? So I think that is a question. I'm currently reading a book. It's about soulmates and past life relationships and stuff like that. Ki bhai, hamara jo bhi aapka partner hai, wo pehle se decide hoke aata hai. It's a soul contract, wagera wagera. Lekin, I will tell you what Jay Shetty said today. So I think this is something to think of. He says, every single person has three big loves in their life. मतलब तीन बार उनको प्यार होता है हर person को. शायद आपको तीनों बार नहीं हुआ प्यार या जो भी है, मतलब लेकिन तीन significant relationships रहती है सबकी life में. Okay, पहली तो वो होती है which is like absolute chemistry, fireworks, तूफानी, एकदम like OMG ये क्या हो रहा है, I don't understand, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, wow, चलो भाग चलते हैं, let's elope to Las Vegas and get married, that kind of, you know, fireworks, okay? Then, the second one is the long-lasting relationship, कि आप उनके साथ बहुत लंबे time तक आप relationship में हो, लेकिन for some reason, because of timing or indifferences या जो भी है, आप 5 साल तक हो, 10 साल तक हो, 11 साल तक हो, those long-lasting relationships, जिसको हम सोचते हैं कि लास्टिंग होगा, दे डोंट रियली लास्ट बिकॉज दैट इज योर सेकेंड टाइप ऑफ अ सोलमेट दैट एवरी वन मीट्स एंड सम हाउ इट डजेंट एंड इट डजेंट लाइक यू डोंट हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर और दैट काइंड ऑफ थिंग या जो भी है दोज आर दोज लॉन्ग स्टैंडिंग सोलमेट्स देन द थर्ड वन इज दैट काइंड ऑफ अ सोलमेट विच अकॉर्डिंग टू हिम इज द बेस्ट काइंड ऑफ अ सोलमेट इफ यू कम अक्रॉस दिस पर्सन देन दिस इज हु यू शुड बी चूजिंग. And of course, you can choose either of these. I mean, the choice is yours by the end of it. But the third kind of a soulmate that we get is the one that shows you a mirror. मतलब आपको दिखाते हैं अपनी शक्ल आईने में. Like they don't mirror you in any way. Which means it's not necessary कि आपका जो soulmate होगा, जो mirror वाला soulmate होगा, वो आपको आप बिल्कुल आप जैसा similar होगा. या फिर सेम टू सेम आपकी आदतें होंगी या यू अग्री ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. नो, दैट्स नॉट व्हाट इट मींस. बट इट मींस दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू शो यू द मिरर इन सच अ वे दैट आपकी जितनी भी फ्लॉज होंगी ना, जितनी भी आपकी जो छोटी छोटी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं या फिर मे बी सम थिंग्स विच माइट बी रेड फ्लैग्स इन यू योर सेल्फ विच यू डोंट रियलाइज विद अदर पीपल, दिस मिरर पर्सन इज गोइंग टू शो यू दैट कि भाई this is what you're doing and this is what you need to work on in order to be a better person in life. So I think there was something to it. We'll talk a little bit more about this, like, after this tune.

0: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oora can help us save up to 50% on our total debt. And the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.
7: All right, guys, this is Ippy the Hippie back in the house, and I'm going to be here with you for only 30 more minutes is hafte kyunki last aadha ghanta bacha hai mere show mein. But don't worry, I will be back on Monday with lots more conversation and lots more discussion and lot more fun stuff and great tunes. Thank you, first of all, for all the lovely calls. I really enjoy talking to each and every one of you and getting to know your story and then sharing a little bit of my story. I'm so glad ki aap log mujhe connect karte, aap mere saath connect karte, and you know, we have this like little conversation. I feel like I'm sitting on this like chai or a coffee hang with my friends. It's so amazing. But aage badhte hue, enjoy this

भाई आपको जैसे रहना है आप रहिए, कि रहना तू जैसा तू, लेकिन गाइस अपने टैक्सेस जरूर सॉर्ट आउट कर लीजिए. एजी फिन टैक्स, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिन टैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US. अगर आप इंडिविजुअल हैं, स्टार्टअप हैं या इस्टेब्लिश बिजनेस हैं, एजी फिन टैक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशन टेलर्ड टू योर नीड्स. From bookkeeping, payroll accounting, bank and credit card reconciliation, proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory service. They help keep your finances organized, compliant and future ready, trusted, efficient and committed to your success. AG Fintax is your partner in building a strong financial future. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. ठीक है guys? कॉल कर लेना, भूलना मत. तो जैसे मैं बोल रही थी, लाइक थ्री टाइप्स ऑफ सोलमेट्स अकॉर्डिंग टू जय शेट्टी. आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आर रेगुलर लिसनर्स. ही आस्क्ड मी कि आप कौन से नंबर पर हो. भाई मैंने तो बोला कि मेरी दो तो हो चुकी है, मैं थर्ड वाले पे बैठी हूँ. अभी मुझे किसी ने आईना नहीं दिखाया है. मैं अपने आप को ही बाय यू नो गोइंग टू थेरेपी मैं खुद ही अपने आप को आईना दिखाती हूँ. मुझे कोई आईना दिखाने वाला मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली अभी तक, लेकिन मे बी समडे. और दूसरी चीज़ पता है क्या है, समथिंग रिलेटेड टू दैट. आई सॉ अनदर, यू नो देर आर सो मेनी ऑफ दीज लाइक इन्फ्लुएंसर थेरेपिस्ट टाइप थिंग. डोंट लिसन टू एवरी वन बाय द वे. एवरी वन इज जस्ट ट्राइंग टू गेट फेमस ऑन द इंटरनेट दीज डेज. हाउ एवर जस्ट लिसन, मे बी समटाइम्स देर इज समथिंग टू थिंक अबाउट, बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर. सो आई वॉच दीज थिंग्स एंड आई थिंक अबाउट इट. देर वॉज इज अनदर वीडियो वेर आई सॉ दैट this woman was talking ki the kind of relationships you get into, like if you constantly have this history of getting into like failed relationships, things not working out wagera wagera, to then the idea is basically you land up getting into the same kind of a relationship or the same kind of a situationship or whatever your case might be, jab tak aap wo wali cheez jis उसको सॉर्ट आउट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू

0: favorite music on your favorite radio.
1: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: रुको जरा सबर करो
3: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है स्टे ट्यून टू फनेशिया

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

नमी है। एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की

बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनशिया।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है, मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
4: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
5: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hi, this is Akshay Kumar, and you're listening to Funasia Radio.

स्तंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड,

मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।

की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #ouch #ho और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

मगर बस आशिकों पे रहे।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार्ट से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आप

और उसी हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम. आई हैव ऑल द डिटेल्स कमिंग अप फॉर यू, बट आई डिड वांट टू प्ले दिस वर्जन ऑफ वंदे मातरम फॉर यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम टुडे ऑन दिस लवली फ्राइडे मॉर्निंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स द 7th ऑफ ऑगस्ट टुडे. तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम हियर.

0: This part of our show is proudly brought to you by AG FinTax. It's one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States. So whether you're an individual, a startup, or an established business, AG FinTax offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services, they help keep your finances organized, compliant, and future ready. Trusted, efficient, and committed to your success, AG FinTax is your partner in building a stronger financial future. You can call them for more details. The number is 469-942-9888, 469-942-9888, or visit agfintax.com. And representatives of AG FinTax will be on our airwaves a little later in our program. As we head towards another 101, seems like again today, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, all four days, we hit the triple digits. And so we've hit 14 days of triple digit temperatures so far. 20 has been the average since 1991. And as we get ready for 1 million kids back to school on Monday, do remember to enjoy this tax-free back-to-school weekend today, tomorrow, and Sunday. We'll talk more details about all that coming up right here on the airwaves of your morning drive time special on the FunAsia Network. Thank you very much for letting me into your cars and drive you to your destination. I'll open the lines for your calls. Number in the studios is 972-235-5555, and we'll play whatever it is you want to listen to. I'll also take any comments, feedback, suggestions that you would like to mention right here, right now. 972-235-5555.
1: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiserway, Suite 205, Frisco.
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
4: Figure not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: Ritesh, कभी सोचा है? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ?
12: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
13: फूडिस्तान इन ऑबरी. Mention FunAsia and enjoy 10% discount. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. Or email at info@seemamehtalawfirm.com.
14: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
15: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 minute वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
13: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तान है, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं कोई भी नहीं जो बताए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा, कोई नहीं है कोई भी नहीं ना पास ना दूर, एक यार है दिल की धड़कन अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन अर्विंग।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
5: कॉल 972-897-1530. firstunitedtexastitle.com.
6: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
6: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
5: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
8: ये तारा वो तारा हर तारा.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
10: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
5: First three customers shopping for $150 gets a free 10-gram silver coin.
10: India Bazaar, the people's store.
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
15: हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका गपशप गली में। और इस गली में आज आयुषी आपका इंतजार कर रही है आपको एंटरटेन करने के लिए। आप सबको सबसे पहले हैप्पी फ्राइडे। भाई हफ्ता खत्म हो गया है, बस आज का दिन ऑफिस जाओ, उसके बाद से दो दिन चिल मारना है या घर आके काम करना है पता नहीं। डैलस का मौसम तो ऐसा हो रहा है ना कि पूछो मत। डैलस की धरती बार बार हमसे यही कह रही है

डैलस की गर्मी भी कुछ ऐसा ही कह रही है, कहीं आग लवे लग जावे, कहीं नाग डसे डस जावे, हम कुछ नहीं करने वाले, हम मौसम को नहीं बदलेंगे, मौसम ऐसा ही रहने वाला है, इतनी गर्मी पड़ने वाली है। कल भी द टेम्परेचर वॉज अराउंड 104 एंड बाप रे बाप, आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मौसम ऐसा ही रहने वाला है। एंड आई एम होपिंग कि जल्दी से मौसम बदले यार, थोड़ी सी ठंडक आए, बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है, क्यों ऐसा ही है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने शो को, और आपको पहले एक जानकारी दे देते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा और स्पार्कल, अपने स्पेशल मोमेंट्स में थोड़ा सा और स्पार्कल ऐड करना चाहते हैं, तो आज ही जाइए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ, जो कि प्रेसन रोड पे है फ्रिस्को में। योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन। From beautiful rings and earrings to dazzling necklaces and contemporary diamond styles, find the perfect piece of engagement, anniversary, celebration or simply treating yourself. Experienced unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamond in Frisco. और भूलिएगा मत, इनका app download कर लीजिए भाई, mobile app पे latest collection updates और बाकी सारी जानकारी मिलेगी आपको। आप सुन रहे हैं अपनी host आयुषी को गपशप गली में। वैसे तो ये गली मीठू की है, पर मैंने इस पूरे हफ्ते के लिए इस गली में अपने लिए जगह बना ली थी, है ना, और आपको एंटरटेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा शो पसंद आया होगा, मेरी बातें पसंद आई होंगी, और फिर मौका मिला तो फिर आएंगे आपको एंटरटेन करने के लिए। फिलहाल अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं। ये गाना बिल्कुल फ्राइडे मूड को सेट करता है, मतलब ये वैसा धूम धड़ाके वाला गाना नहीं है, ये जब आप ऑफिस में बैठे होते हैं और घड़ी को देखते रहते हैं तो देख देख के यही फीलिंग आती है।

आज ऑफिस में ऐसी वाली फीलिंग आने वाली है कि कैसे कटेगा ये पल, जल्दी घर में बचे ऑफिस, अरे घड़ी में बचे 4 और हम निकले यहाँ से यार। और नहीं तो क्या, सबको घर जाने की जल्दी होती है, थोड़ा सुकून से सैटरडे संडे बिताने के परिवार के साथ जल्दी होती है। और क्या करने वाले हैं आप इस सैटरडे संडे? अगर कुछ अच्छा प्लान है तो बताइए, हम भी ज्वाइन कर लें आपको। फिलहाल आपके लिए ये गाना।

0: Hello, accident claim. Okay, name of the lawyer. Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
0: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
2: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
0: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
2: इंडिया तक।
0: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
1: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099।
3: मेंशन फनएशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
7: How may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
1: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
9: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
10: कितने आदमी थे?
11: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
12: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में फनीशिया 104.9 FM पे। और अभी हमारी कॉलर साहिबा का फोन आया था, उन्होंने बोला कि आपने क्या बोला, कौन सी गली है ये? मैंने बोला गपशप गली, तो बोली गलियों में तो बड़ी आवाजें आया करती थी, आजकल तो गलियां सुनसान हो गई हैं। हम जिन गलियों में बड़े हुए हैं उन गलियों में कभी आलू ले लो, कभी प्याज ले लो, कभी कांदा ले लो, कभी किसी की आवाज़, कभी आइसक्रीम वाले की आवाज़, तरह तरह की आवाज़ आज भी किन्हीं किन्हीं गलियों में ये इंडिया में ही आवाज़ें आती रहती हैं, पर यहाँ की गलियों में तो शायद ही कोई आवाज़ आती है, और शायद उसी गली की आवाज़ को वो मिस कर रही होंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इस गली में कौन सी आवाज़ आएगी, तो इस गली में मेरे बातों की आवाज़ आएगी, थोड़े धुनों की आवाज़ आएगी, कुछ प्यारे गीतों की आवाज़ आएगी, पर आवाज़ आते रहेगी। इस गपशप गली से बातें नहीं बंद होंगी, आपके दिल तक सीधे पहुंचेंगी।

अच्छा चलिए एक बात बताइए कि जब आप अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, देन हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? डू दे स्पेंड 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? लेकिन हमारे पास एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ योर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर 30 minutes is all it takes to complete your annual physical anxiety care, fibro scan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing and more. All are available at Passion Healthcare. So schedule your appointment today at 214-666-6259. Book your appointment now. Passion Health Primary Care. Your health is our passion.

0: तो ये था एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। एंड नाउ वी हैव ऑन एयर विद अस फरहा फ्रॉम द ऑफिस ऑफ उमर ख्वाजा। हाय फरहा।
1: Hey, how are you?
0: आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: I'm good, thank you for asking.
0: Okay, so yes, Farha, we would want to ask you about your office and also about the the car accident and truck accidents among the the accident coverage and the injury coverages that your offices take care of and how they can help our clients, our listeners.
1: Sure, of course. So I'm the director of the law offices of Umar Khawaja. I'm so happy to be here. We handle all your personal injury needs. So basically, it's anything that is no fault of your own. So you're driving and you're just driving and out of nowhere, someone hits you. It's no fault. That would be one of the type of cases we take. A dog bite. You're at the store or restaurant and you fall down. Or there's a drowning, things that, those type of cases, and there's so many different types in this nature that we handle.
0: Okay, and can you also give us some example of the personal injury cases and the types of incidents that fall under this category?
1: So kind of like what I discussed, you're driving, you get hit from behind, or you're driving, it's your right of way, and someone hits you from the side. That would be like one type, because it was no fault. The other type would be you're at a store, like any store, and there's something on the ground and you slip in it. And, it was a mistake of the store that you're at. So that would be another type of example. There's so many things that fall in this category. Anything that you have a question that you feel is no fault, you should give us a call. I mean, at the daycare, you could be at the daycare and you feel like, hey, maybe there was something that happened to your child, unfortunately. So anything you feel that you were injured in, please call us. We'd be happy to evaluate. We're here 24/7. We don't charge a fee, and there is no fee. Unless we get a settlement, we don't collect our fees. So we're here to win. We want you to win, and we're here 24/7 to help you.
0: Oh, that's something great that, you're not charged unless and until you win the case, right?
1: Yes.
0: Yeah. And what advice
1: exactly
0: would you?
1: That's exactly how we work.
0: What advice would you have for the listeners who may find themselves in need of personal injury attorney?
1: So the first thing would be, please don't admit fault. Sometimes, we are in an accident and we get scared and we admit, oh, I'm sorry. Don't say that. When you're at an accident, call 911. See if they'll come. If they come, get a police report, take pictures. If you're injured, of course, always get to the safe spot. You will also, if they don't come, what you need to do is you need to take pictures. You need to exchange information. Like right away, make sure you get that. All type of picture documentation is very, very helpful. The insurances, the license plate, damage of his car, your car, that is what you need. And then what you do is you just call 1-833-GET-OMAR, and we will take it from there. I mean, this is all we specialize in. A lot of attorneys specialize in all different things, but this is the only thing that we specialize in. We've handled everything from small motorcycle accidents all the way to the Boeing airline accident that happened. So we are here to assist you. We speak multiple languages. We speak Urdu, we speak Hindi, Telugu, Arabic, Pashto, Spanish. So we are here to help you out.
0: Okay, perfect. So yes, any sort of car accident, truck accident, slip falls, aviation cases, that is all you look after, right?
1: Yes, that is all we do. We're really good. You look at our Google reviews, we have a 5-star review. We stand by our review.
0: Perfect. Yeah, thank you so much for coming on air and letting our listeners know. Thank you, Farha.
1: You're welcome. Thank you again. Remember, call 1-833-GET-OMAR, O-M-A-R. We have a location in Plano. Call us anytime, and we are here to assist you 24/7. Thank you.
0: Yes, thank you so much. So for free consultation, you can call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. जी हाँ, तो उमर ख्वाजा का ऑफिस कैन हेल्प यू इन ट्रक एक्सीडेंट, स्लिप और फॉल इंसिडेंट, किसी भी तरह का इंसिडेंट हो, दे कैन हेल्प यू. अटॉर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल. यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कंपनसेटेड. डोंट पे अंटिल यू विन. और फ्री कंसल्टेशन के लिए नंबर हमने आपको बता दिया है, इट्स 469-300-5046. 4646 or you can visit attorneyomar.com. चलिए आपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में. और भाई आज लोगों ने हमें बोल दिया है कि यू नो इस गली में क्या क्या होता है, तो हमने तो बता दिया इस गली में बातें होती हैं, प्यार भरी बातें होती हैं, मीठी मीठी बातें होती हैं, गपशप होती हैं और खूबसूरत बॉलीवुड गानों का सफर चलता है. कुछ आपकी फरमाइश थी, कुछ मेरी पसंद के. लेकिन अगर गली की बात करें तो भाई हमारा बचपन तो गलियों में ही बीता है. गलियों में खेले हैं, गलियों में घूम घूम के कुल्फी खाई है, मूंगफली खाए हैं, गलियों के जितने भी ठेले आते थे गर्मी की छुट्टियों में उसका इंतज़ार किया करते थे कि भैया आप कौन से ठेले की बारी है. अगर मम्मी पापा नहीं माने तो बाबा दादी के पास दौड़ के चले जाते थे कि भाई कुछ दिला दो यार, दिन में बच्चा करे ही क्या. यहाँ पे बैठे बैठे ढूंढते हैं यू नो हम जा करके गूगल पे हमारे बच्चों के लिए कौन सी जगह है जहाँ हम उनको इस वीकेंड लेके जाया करते हैं. हमारा बचपन गलियों में बीता है और इनके लिए हम गली गली घूम रहे हैं. तो ऐसा ही है कुछ हमारे बचपन से बड़े होने से हमारे बुढ़ापे तक का सफर. तो भाई इस गली में यही बातें चल रही हैं आज, यही चर्चा चल रही है. तो अपनी गलियों की यादें आप भी बताइए. आप भी किसी मोहल्ले के गली में बड़े हुए होंगे, किसी शहर के गली में बड़े हुए होंगे. कौन सी वो फेमस गली है आपके शहर की जिसका नाम आप मुझे बताना चाहेंगे और उस गली पे हम करेंगे आज चर्चा इस शो में. फिलहाल ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं लेके आ रही हूँ अपनी कॉलर की फरमाइश पे.
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: बेटा, 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
6: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो।
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack. Exciting slots or ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower or relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

तो भाई आज ये गपशप गली बन गई है, यादों की गली, और सबको अपनी अपनी गलियां याद आ रही हैं कि कैसे गलियों में दौड़ दौड़ के मूंगफली चुराया करते थे, कैसे राशन वाली गली जो बॉम्बे में है उस गली में राशन लिया करते थे, और जब महीने की पहली तारीख आती थी तो लाइनें कितनी लंबी हो जाती थी, कैसे अपनी गली में रेत के ऊपर बैठ के खेला करते थे। कोई फैंसी टॉयज नहीं चाहिए था, कोई गैजेट्स नहीं चाहिए थे, कुछ भी नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा समय और थोड़ी सी रेत, और उस रेत पे दो चार दोस्त जिनके साथ बैठ के रेत पे हवाई किले बनते थे, और उस पे से मस्ती होती थी, साइकिल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। आज हम गलियों की बात कर रहे हैं, उन गलियों की जिन गलियों में हमने अपना बचपन बिताया है, और मैं सोच के नहीं आई थी कि आज ऐसा कुछ टॉपिक रखूंगी। आज बस किसी की बात से बात निकली कि भाई ये कौन सी गली है, तो बस इस गली को गपशप गली से यादों की गली।

गलियों की बात कर रहे हैं, उन गलियों की जिन गलियों में हमने अपना बचपन बिताया है। और मैं सोच के नहीं आई थी कि आज ऐसा कुछ टॉपिक रखूंगी। आज बस किसी की बात से बात निकली कि भाई ये कौन सी गली है, तो बस इस गली को गपशप गली से यादों की गली बना दिया है। इस फ्राइडे मैंने, फ्राइडे है, छुट्टी आ गई है भाई 2 दिन की, तो आप कौन सी गलियों में घूमोगे, अपनी यादों की गलियों में या फिर ऐसे किसी किसी के घर पे जाके दोस्तों से मिलोगे। जो भी करोगे, बचपन की याद हमेशा साथ रहती है, गली की याद हमेशा, जिस गली में हम बड़े हुए हैं, जिस मोहल्ले में हम बड़े हुए हैं, उसकी याद हमेशा रहती है। और मेरा घर आज भी उसी गली में है। मतलब लोग कहते हैं ना, वो ट्रांसफ़र वाले जॉब्स में रहे, कभी कभी लगता है यार कितना अच्छा रहा होगा ना कि किसी के पापा अगर ट्रांसफरेबल जॉब में होते तो अलग अलग जगह, अलग अलग शहर, अलग अलग क्वार्टर्स में रहते हम लोगों का। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम एक ही गली के एक ही घर में बड़े हुए हैं। मेरे दादा ने वो घर बनाया था और आज भी उस गली में ना, गली बड़ी बदल गई है अब, लेकिन वो यादें आज भी हैं। वो पड़ोसियों के घर, वो पड़ोसी आज भी वहीं हैं और बड़ा अच्छा लगता है उस गली में वापस जाके, उस घर में रह के। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते छोटे शहरों में, जब आप जाते हो छुट्टियों में तो यू डोंट हैव टू मच टू डू बिकॉज यू डोंट हैव मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स देयर, सब बाहर निकल गए हैं। बट स्टिल उस घर में सुकून से बैठना ही बड़ा अच्छा लगता है। उस गली में ऐसे बिल्कुल आप निश्चिंत होकर घूमते हो, वो गली आपको अपनी सी लगती है। ऐसा लगता है ना, इस गली में ठहराव है, ये गली अपनी है, ये गली वो है जहाँ, जिसके हर कोने में मेरी एक याद है कि उस गली के उस ट्रांसफॉर्मर पे हमने एक बार साइकिल मारी थी। उस जगह पर जब बिल्डिंग बन रही थी तो रेत के ऊपर बैठ के हम खेले थे। हमारे घर के बाहर जब सड़क टूटी थी तो नाले में किसकी बाइक गिरी थी, किसने किससे वहाँ लड़ाई करी थी, किससे मम्मी ने थप्पड़ खाया था और किस आंटी ने हमें डांटा था, ये सारी यादें हमारे साथ ना उस गली के अंदर ही है यार। और वहाँ जाके ये फीलिंग आती है, हम जाते हैं इंडिया तो लंबा लंबा समय बिता के आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज गलियों की बात करें, तो आप भी बताइए ना, आप कौन सी ऐसी कोई फेमस सी गली आपके शहर की जिसका नाम कुछ वियर्ड सा हो, कुछ अजीब सा हो, और देखते हैं कौन है जो मुझे कॉल करके सबसे अजीब व गरीब नाम बताता है।

तो भाई, यादों की इस गली में, गपशप गली जो कि यादों की गली बन गई है, उसमें आपका फिर से स्वागत है। और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने सुन रहे हैं हम आपके साथ। आपकी फरमाइशें आ रही हैं और अजीबो गरीब मोहल्लों के नाम भी आ रहे हैं भाई। जी हाँ, अभी हमें फिरोजाबाद के छोटा चौराहा के बारे में पता लगा, मोहल्ला अट्टा वाला। देखिए नाम कितने अजीब होते हैं ना हमारे यहाँ, कितने अच्छे होते हैं, सुन के अच्छे लगते हैं यार। ये सारी चीज़ों से हम कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए, जैसे मैं जहाँ से मैं आती हूँ बिहार से, वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है बंदर बगीचा। दूसरा एक जगह है, वो है मछुआ टोली। ऐसे ऐसे नाम आते हैं। मतलब आप सोचिए, आपके यहाँ के भी ऐसे कुछ नाम बताइए, जयपुर वालों, भोपाल वालों, इंदौर वालों, पुणे वालों, यार बताओ कौन सी जगह है, कौन सा ऐसा वियर्ड नाम है जो आप बताना चाहेंगे। जल्दी से फ़ोन करिए और बताइए अपने होस्ट आयुषी को। वैसे तो अपने शो को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज़ प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States. Whether you're an individual, a startup, or an established business, AG Fintechs offers innovative financial solutions tailored to your needs, from bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. They help you keep your finances organized, compliant, and future ready. Trusted, efficient, and committed to your success, AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. You can call them on 469-942-9888. I repeat, it's 469-942-9888. Visit agfintechs.com. तो भाई, सिर्फ पटना की ही गलियों के नाम अजीब नहीं है, मछुआ टोली, बंदर बगीचा और कौन कौन से रांची की भी गलियों के नाम बड़े अजीब हैं, क्योंकि रांची मेरा ससुराल है, तो वहाँ की भी मैं कुछ कुछ जगह ऐसे जानती हूँ, पर बताऊँगी नहीं। देखती हूँ कोई रांची वाला, कोई और मुझे फ़ोन करता है, कोई और शहर से, भोपाल से, कोई दिल्ली से, और बताता है या नहीं बताता है अजीबो गरीब नाम उनके शहर और मोहल्ले के।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
8: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023-2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
8: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
14: डोंट टच दैट डायल। कीप लिसनिंग।
15: आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में, और आज इस गली को हमने यादों वाली गली बना दिया है। ऐसी ऐसी गलियों और मोहल्लों के नाम आ रहे हैं कि पूछो मत। मतलब मैंने कुछ नाम क्या बताए, आपने तो बिल्कुल, मतलब मेरी जबान लड़खड़ा रही है नामों को लेते हुए। देखो इतने सारे कॉल्स आ गए और मैं जिन लोगों ने अभी सुनना शुरू किया है उनको जल्दी से बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं यादों की गली के ऊपर, उन गलियों में जिनमें हम बड़े हुए हैं, उस शहर में जहां हम रहे हैं और जहां के अजीब गरीब गलियों के जो नाम है ना उनकी लिस्ट निकालने की कोशिश करें कि कौन सा सबसे वियर्ड है, कौन सा सबसे अजीब नाम है। तो भाई हमें पंजाब वालों का कॉल आ गया है, वहां पर उन्होंने बताया बताया है कि जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर एक था चौड़ा वेड़ा, एक था बंदरा वाला टाबा और 40 का महल्ला और मोटा चौक। मतलब अगर मैंने बोलने में गलती कर रही हो तो माफ़ करिएगा मुझे, बट ये लिस्ट है पंजाब वालों की। और हमारे हैदराबाद वाले कहाँ पीछे रहते हैं, उन्होंने भी फ़ोन कर दिया। लकड़ी का पुल, टापा चबूतरा और तार नाका, टोली चौकी। देखो ये लोग अभी दे आर लीडिंग विद द नंबर ऑफ नेम्स। एंड आप लोग क्या कर रहे हो, आपके शहर में भी तो होंगे कुछ अजीबो गरीब नाम, दिल्ली वालों, एमपी वालों, महाराष्ट्र वालों, मैं सबको बुला रही हूँ, आ जाओ बताओ, राजस्थान वालों, बिहार वालों, यूपी वालों, हो कहाँ तुम लोग, जल्दी आओ और अपनी बचपन की यादें ताज़ा करो। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को।

Okay, so if you're planning a wedding, graduation, housewarming or any special celebration, तो इससे पहले कि आप स्ट्रेस करें, सोचें कि वेन्यू क्या होगा, डेकोर कहाँ होगा, केटरिंग कौन करेगा और छोटी छोटी इवेंट्स की डिटेल्स के बारे में सोचें, आपको एक नाम के बारे में पता होना चाहिए एंड वो नाम है वेनेसा इवेंट्स. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटिफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय रेनोन बसेरा ग्रैंड. So you can focus on making memories while they take care of the rest. Call Hari Basera today at 469-442-8770. Venice Events, your celebration partner. तो आप सुन रहे हैं आयुषी को गपशप गली में और बहुत मज़ा आ रहा है अनोखी गलियों के नाम सुनकर के मुझे. जैसे हैदराबाद में एक और गली है चीरा गली, चेरा गली, चीरा गली मुझे बताया गया. एमपी में मैडम ने बताया कि चौरस्ता गली नाम से है. तो भाई मैंने बोला चौरस्ता तो हमारे पास भी, चौरस्ता तो हमारे शहरों में भी है, मतलब जिस जहाँ से भी चार रास्ते जाते हैं उसको हम चौरस्ता बोलते हैं, है ना. तो एमपी से भी हमें एक कॉल आ गई, हैदराबाद वाले तो लीड कर रहे हैं, दो कॉल्स आ गई हमें. देखिए मैं ऐसे कंपटीशन क्रिएट कर रही हूँ ताकि मुझे अलग अलग गलियों के नाम मिले. और देखो बिहार को, पटना को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो भाई हमारे यहाँ तो है अलग अलग गली मोहल्ले. एक है उसमें से कदम कुआं, मतलब ऐसे कदम रखते आप कुएं में नहीं चले जाते हो, यहाँ पर एक पुराना कुआं होता हुआ करता था, मतलब काफ़ी पुराना कुआं, और उसके आसपास कदम कदम के पेड़ होते थे, इसलिए इसको बोलते हैं कदम कुआं. मतलब ये मत सोचना कि कदम रखते हैं कुएं में गिर जाओगे आप, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, चलिए ये रहा अगला गाना आपके लिए. अरे गाना कहाँ चला गया मेरा? ओह नो, व्हाट्स हैपनिंग.

भाई जादू तो आज यहाँ पे हो गया है और कोई नहीं, बहुत सारे लोग मिल गए हैं मुझे यहाँ पे। इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए असम वालों ने खाता खोल दिया है अपना। उन लोगों ने भी अपनी गली का नाम बता दिया है, गांधी गली, क्योंकि वहाँ पे एक गांधी जी का मॉन्यूमेंट है। तो गांधी बस्ती, आई एम सॉरी, गांधी बस्ती। और जयपुर वालों ने भी खाता खोल लिया है, उन्होंने ही बता दिया है हमें ठंडी प्याऊ के बारे में। देख रहे हैं आप कैसे सब बताए जा रहे हैं हमें। तो भाई अब देखते हैं किसका कॉल आता है इसके बाद। हम मैं अपने यहाँ की एक और गली अपना स्कोर थोड़ा सा अप कर लूँ। हमारे यहाँ एक छज्जू बाग है ना, मजेदार सा नाम है ना, छज्जू बाग, इसलिए क्योंकि वहां पर एक माली हुआ करते थे, छज्जू जी। छज्जू जी जो है उन्होंने वहां पे उस पूरे एरिया को, बाग को सजाते थे, फूल लगाते थे। तो हमने ये इलाका उनके नाम पे रख दिया, छज्जू बाग, छज्जू जी का बाग, छज्जू बाग। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने शो को और देखते हैं कौन होगा वो अगला जो हमें करेगा फोन और अपने शहर के एक अनोखे मोहल्ले या गली का नाम बताएगा हमें। उसके पहले गाने की तरफ बढ़ते हैं कि पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि भाई डायमंड्स आर नॉट जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इररेजिस्टेबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड अबव 18 कैरेट। सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, पहले गाना सुनाते हैं फिर करेंगे आपसे बातें।

यू लिसनिंग टू योर होस्ट आयुषी फन एशिया 104.9 एफएम. मैंने ओके इसलिए बोला कि मतलब मजा आ रहा है फोन उठा करके, ऐसे ऐसे जगह के नाम सुन करके मजा आ रहा है. हैदराबाद वाले अभी भी लीड कर रहे हैं भाई. लाड़ बाजार, बेगम बाजार, चिक्कड़पल्ली और कोटी, ये सारे नाम मुझे पता लगे हैं. और भाई एक जनाब ने तो हमें बता दिया दुबई के बारे में, खादेर होटल. ये था जब वो 1990 में दुबई थे तब का उन्होंने मुझे बताया है. और वहाँ पे कोई इस नाम का होटल नहीं था. यहाँ पर जब भी किसी को मिलना होता था तो बोलता था खादेर होटल आओ, क्योंकि एक बंदा था खादेर नाम का जो कि सबको वहाँ पे घूम के चाय पिलाया करता था. तो उस स्पॉट को खादेर होटल बोल दिया गया, भले वहाँ कोई होटल था या नहीं था बोल दिया गया. और हैदराबाद से एक चिराग गली की भी का भी नाम बताया गया मुझे. देखिए कितने अलग अलग गली हैं. अब यार पटना वालों को तो मैंने बता दिया, पटना के नाम बहुत सारे बता दिए, रांची के बता देती हूँ. ससुराल है मेरा, फर्ज बनता है मेरा वहाँ का भी. तो वहाँ का एक अजीब व गरीब नाम है ढेला टोली. जी हाँ, डोरंडा, अहिर टोली, ऐसे ऐसे नाम है वहाँ पे, ऐसे ऐसे खतरनाक. अरगोड़ा, हरमू हैं ऐसे गली मोहल्ले. अगर आप भी शहर का कोई गली और मोहल्ला हो जिसको आप छू के वापस आना चाहते हो यादों के थ्रू, नाम के थ्रू, तो भैया फ़ोन उठाइए और बताइए हमको. हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन का. लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस बार रक्षाबंधन पे फनेश्वर चौकटाओ कैसिनो रिजॉर्ट एंड्योरेंट वॉन्ट्स टू हियर योर मोस्ट अनफर्गेटेबल मेमोरी, क्योंकि हम यादों की बात कर रहे हैं ना. तो ये मेमोरी आपकी होगी आपकी भाई या बहन के साथ. करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है. एक एक मिनट का वॉइस नोट बनाना है व्हाट्सएप पे और आपको भेजना है 2148377147 पे. आई रिपीट, इट्स 2148377147. एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज इज वेल. और ग्रैंड प्राइज क्या होगा? एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसिनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट. फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स यू हैव टू चेक आउट फनेशिया का सोशल मीडिया पेज. जाइए और देखिए वहाँ पे चौकटाओ कैसिनो रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट, वे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. और भैया आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 21 ईयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. एंड टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. Play responsibly. And for those who have just started listening to my show, what we have been doing is going back to the memory lane. और इस बार हम ना 90s के गाने नहीं सुन रहे, इस बार हम कुछ कर रहे हैं अलग. हम अपने गली मोहल्लों के, अपने शहर के नाम बता रहे हैं जो कि थोड़े अजीब व गरीब हैं, थोड़े से weird हैं, लेकिन उन्हीं गली मोहल्ले में हम खेल कूद के बड़े हुए हैं और बचपन से वो सारे नाम सुनते आए हैं. ठीक है, तो भैया फ़ोन उठाइए. हैदराबाद वाले लीड कर रहे हैं, जयपुर वालों ने खाता खोल दिया है, आसाम वालों ने बता दिया है, पंजाब वालों ने बता दिया है, भाई बिहार झारखंड का जिम्मा मैंने उठा लिया है. बड़े सुस्त हैं हमारे यहाँ वाले लोग. अब बाकियों देख लो यार आपने क्या करना है, फ़ोन उठा के कॉल करना है या नहीं करना है. करना है तो नंबर है 972-235-5555. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 एफएम पे.

0: ओके तौबा तौबा, ये था गाना जो मैं आपके लिए लेकर के आई थी. और अभी वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. आज गपशप गली में बहुत सारी यादें ताज़ा हुई हैं. गलियों के नाम बताए गए हैं क्योंकि बस एक कॉल लगता है हमारे शो की दिशा को बदलने के लिए. और आज सुबह वही हुआ. सोच के कुछ और आई थी पर कर कुछ और रही हूँ क्योंकि बस गलियों की बात निकली तो हम अपने बचपन की यादों में चले गए, बचपन की गलियों में चले गए. वो गलियाँ जहाँ हमने अपनी सुबह बिताई है, शाम बिताई है, दोपहर को भी वहाँ घूमे हैं. कड़कड़ाती धूप हो या बारिश हो उसमें हम नहाए हैं, या ठंडी का मौसम हो वहां पे ही बैठ करके धूप सेका है हमने. उन गलियों से यादें जुड़ी हैं. ये गलियां हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है. और इन्हीं गलियों की, इन्हीं मोहल्लों की बात कर रहे थे, कुछ यादें ताज़ा कर रहे थे आपके साथ. और मोहल्ले की वो दुकान जहाँ से आप चॉकलेट उठाया करते थे, वो मोहल्ले के जो बच्चे थे जो घर पे आके साथ में टीवी देखा करते थे, वो साइकिल की रेस जो उस गली में लगती थी, आंटियों की डांट भी आती थी कि कितना तेज चला रहे हो तुम लोग, धीरे चलो गिर जाओगे सारे के सारे. ये सारी गलियों की यादें हैं. बात करेंगे और इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पर.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
2: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
10: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
14: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
16: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Bal Vihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
14: Nation ka fun station, Funisha Radio.
0: आप सुन रहे अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में. बड़ा मजा आया आज इस गली में. बहुत सारी बातें की और यादों की लड़ी सी लग गई थी. गलियों के नाम सुने यार. हैदराबाद वाले आर स्टिल लीडिंग एंड लेट्स सी और कौन कॉल करता है. कौन सी अजीब गरीब गली मोहल्ले का नाम मुझे बताता है.

अजीबोगरीब नाम सिर्फ हिंदुस्तान तक ही क्यों सीमित रहे भाई, यहाँ अमेरिका में भी है ना, शिकागो में डुवॉन स्ट्रीट पे भाई दो स्ट्रीट्स हैं ऐसे जो कि हम भारतीयों को बिल्कुल ऐसे समझ में आएंगे, गांधी स्ट्रीट और कायदे आजम स्ट्रीट। जी हाँ, ये है शिकागो में, अभी पता लगा है मुझे। मैं इतने साल से यहाँ अमेरिका में रह रही हूँ पर मुझे नहीं पता था, अभी एक कॉल आई और हमें ये बताया गया है। तो अजीबो गरीब मोहल्लों के नाम तो हैं और बने रहेंगे, टिके रहेंगे हिंदुस्तान में, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? P3 ईटरी के बारे में बात करी हूँ, लंच का टाइम है यार, अगर इधर हो 121 पे तो जाओ, यहाँ नहीं भी हो तो गाड़ी लेकर के आओ। बिकॉज फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स टू फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, इफ यू स्टिल हैव एन एक्सपीरियंस P3 हब एट 121, यू सीरियसली मिसिंग आउट। ये मेरी गारंटी है क्योंकि हम खाना खाए हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा खाना, बहुत ही टेस्टी खाना, मत पूछिए। दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर, वेदर इट्स ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट और अ फूडी मीटअप, P3 ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स। तो भाई जाइए P3 ईटरी हब 121 पे एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर एट P3 ईटरी.com। चलिए ये रहा अगला गाना आपके लिए।

तो ये इस गाने की फरमाइश आई थी हमारे रेगुलर कॉलर सफी की तरफ से. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना. फन एशिया 104.9 एफएम पे आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में. ये गली है मीठू की और इसमें मैंने अपनी जगह बना ली थी आज तक. आज 12:30 बजे तक मैं आपके साथ हूँ और इसके बाद अगले हफ्ते से आप फिर से मीठू की मीठी मीठी आवाज़ सुनेंगे यहाँ 10 से लेकर 12:30 बजे तक का. मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर शो करने में. और लंच का टाइम हो रहा है, खाने पीने की बात हो रही है. तो कल ऐसे ही कुछ हुआ, घर पहुंचने के बाद मेरे यहाँ भी ना खाने पीने की बात होती है हमेशा, क्योंकि हमारी बेटी छुटंकी रानी वो घर पे आती हैं और आती सबसे पहले खाना मांगती हैं कि भैया मम्मा हमको कुछ खाना है. और वो डिनर का ऑर्डर भी दे देती हैं और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर बन गया, मैडम की स्पेशल प्लेट में उनका स्पेशल डिनर सर्व हो गया और वो खाना खाने के पहले अपनी आँखों से खाने को देखती हैं और जो उन्होंने बोला था हमने वही बना के उनको दिया. तो बेसिकली हमारे यहाँ आलू का भुजिया और पराठा बनता है बिहारियों के घर में, तो मैडम को वही खाना था. मैंने जैसे ही उनको खाना सर्व किया, मैडम बोलती मम्मा पनीर कहाँ है. मतलब मेहनत करके गर्मा गर्म पराठा और सब्जी बना के दिए हैं और उसके बाद से ये 3 साल की लड़की के पैतरे चल रहे हैं. बताइए आप, ऐसे पैतरे हमारे भी होंगे कभी बचपन में जो हमारी माओ ने सहे होंगे, पर आजकल के बच्चे मुझे लगता है ना 2 कदम आगे ही निकल गए हैं, इनके पैतरे खत्म ही नहीं हो रहे. चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. ऐसे रोज नए किस्से होते हैं मेरे घर में जो मैं कभी कभी शेयर करूंगी आपके साथ. और अगर ये किस्से आप सिर्फ सुनना नहीं देखना भी चाहते हैं ना, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. कहाँ? इंस्टाग्राम पे बिहारी मॉम इन अमेरिका के नाम से मेरा हैंडल है, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये मैडम के नखरे और नौटंकी अभी देख सकते हैं. फिलहाल आपको ये बता दें कि इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है एट IIT's आनंद बाजार 2026 ऑन सैटरडे ऑगस्ट 15th फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट को अमेरिका सेंटर फ्रिस्को. The best part, it's completely indoors and free for everyone. Enjoy authentic Indian food and grand parade, cultural performances, live music, shopping. Ji haan, bring your family, bring your friends and be the part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration. IANT Anand Bazaar 2026. Chaliye, agle gaane ki taraf leke chalte hain aapko.

0: Ladies and gentlemen.
1: ओके, तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। वक्त बहुत कम है मेरे पास। जी हाँ, काफी कम वक्त बचा है। अब सिर्फ ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट में हूँ आपके साथ और आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन शो को आगे के बढ़ाने के पहले, अगला गाना प्ले करने के पहले आपको ये बता दूँ कि वक्त हो रहा है हमारे गिव अवे का। तो जल्दी से आज का गिव अवे कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। कहाँ से करेंगे, कहाँ क्या, कहाँ से आपको गिव अवे देंगे? हम देंगे आपको ये सैन इडली से, सैन इडली रेस्टोरेंट जो कि 121 ओकेस्टा पे है, और आप जीत सकते हैं एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी। ठीक है, 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसा, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी भी मिल रही है आपको। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शन, विजिट सैन इडली रेस्टोरेंट एट हाईवे 125 121 एंड कस्टर जंक्शन। ठीक है, तो सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। दो लोगों को हम देंगे, दो जिन्होंने सबसे पहले फोन किया, दो लोगों को हम देंगे ये तोहफा, और आपको फोन उठाना है और कॉल करना है। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है क्या है ना, स्टूडियो का नंबर है 9722355555। फोन उठाइए, कॉल करिए और जवाब दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है ये, और इसमें मुझे एक्टर्स के नाम भी जानने हैं।

0: टशन फिल्म का था ये गाना और हमारे आज के दो हमें विनर्स मिल गए हैं. एक है श्रीकांत एंड द अदर वन इज मेघा. जोरदार तालियां. थैंक यू फॉर कॉलिंग गाइज. और जिन लोगों को इस बार गिव अवे नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले सेगमेंट में अगले मंडे है यार, आप कॉल कर सकते हैं और तब भी ले सकते हैं गिव अवे. तो चलिए, वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं और फिर बातों और गानों का सिलसिला चलता रहेगा गपशप गली में. आप
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
8: Kaun sa?
7: Are wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
8: अरे सारे तो सेम है.
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
8: ओ हाँ, ये तो अलग है.
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338. 4697343338. माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
12: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
13: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
12: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
13: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है.
13: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
14: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
15: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
15: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
18: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल. अवेलेबल।
19: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
20: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
21: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
22: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
23: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
24: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
23: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
25: Zindagi ke kai rang. Fanisha Radio ke sang.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं गपशप गली में आयुषी को 104.9 एफएम पर। तो भाई आज फ्राइडे है, सब बड़े एक्साइटेड होंगे, ऑफिस से जल्दी निकलने की तैयारी हो रहे होंगे, कर रहे होंगे, घड़ी देख रहे होंगे कि कब समय बीते। और आज का दिन ऐसे लगता है ना कि टाइम ही नहीं बीत रहा यार, घर जाना है, जल्दी से जाना है और जाके सैटरडे की प्लानिंग करनी है। कहीं फ्राइडे नाइट में किसी पार्टी में जाना हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सैटरडे संडे का प्लान कुछ नहीं है तो घर पे बस आराम करना है। तो आज समय ऐसा लगता है कि घड़ी में बीतता ही नहीं है। और एक समय वो था जब वीकेंड पे हम लोग मूवी के प्लान्स क्या करते थे यार, कि कौन सी नई मूवी रिलीज हुई है। अब वैसा क्रेज नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ OTT पे आ जाता है, आराम से घर पे बैठ के अपने ही थिएटर में हम देख लेते हैं, बैठ करके अपने मीडिया रूम में देख लेते हैं, खुद के टीवी में लगा के देख लेते हैं। बट वो भी एक समय था और उस समय ऐसा भी था ना कि डायलॉग्स रट जाते थे। और मुझे याद है एक टाइम था जब मोहब्बतें आई थी, मोहब्बतें में पूरा जो कैसेट आई थी उस समय, वो गानों की नहीं, गानों के साथ डायलॉग के भी कैसेट आए थे। और भाई उनमें से एक क्रेजी फैन था मेरा भाई, जिसने वो कैसेट्स खरीदे थे और नारायण शंकर के सारे डायलॉग्स ऐड किए हुए थे उसने, याद करके रट के बैठा था। और इतना ज़्यादा फिल्मी था वो बंदा, मतलब अब थोड़ा कम हो गया, बाप बन गया है, ज़िंदगी में जिम्मेदारियों के नीचे दब गया है लड़का, इसलिए इतना नहीं है, बट अभी भी फिल्मी है। और उस समय तो भाई हद हो गई थी, हर जगह सिर्फ उसी अंदाज में बात हुआ करता था और सारे डायलॉग्स याद हुआ करते थे।
26: लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

Did you know small health changes are easier to maintain than big ones? Research shows that small, consistent habits are more likely to become lifelong routines than drastic lifestyle changes. Start with one health habit and build from there. This health tip was brought to you by Passion Health. तो जी हाँ, छोटी छोटी आदतों को बदल के, मतलब बहुत बड़ा चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, ठीक है ना। तो छोटी छोटी आदतों को बदलना आपके सेहत के लिए हमेशा अच्छा रहता है, और कुछ आदतें तो कभी नहीं बदलनी चाहिए, जैसे कि ना ये गाने याद रखने की आदत। जब ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा था, हम एक एक शब्द रिपीट कर रहे थे। मतलब ये वो गाने हैं जो जब हम बड़े हुए थे तब हमारे साथ, मतलब हमेशा वॉकमैन में होता था। हम वॉकमैन युग वाले हैं, बाद में वॉकमैन के साथ सीडी आई और सीडी वाला वॉकमैन भी लेके घूमते थे। बट यस, एक एक मैं अभी रियलाइज़ किया मैंने कि एक एक शब्द याद है, पूरे का पूरा गाना ऐसे रटा हुआ है इतने अच्छे से। तो हमें एग्ज़ाम के आंसर्स भी याद नहीं हुआ करते थे यार, जितने अच्छे से ये गाने याद हैं।

यस, सिर्फ गाने नहीं स्टेप्स भी रटे हुए हैं, ऐसा मेरा नहीं कहना है, मेरी कॉलर का कहना है जिन्होंने ये बताया कि आप ये क्यों बोल रही कि सिर्फ गाने हमें, तो मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैं जब ये गाना सुन रही थी तो मेरे दिमाग में इसके स्टेप्स आ रहे थे। तो ऐसे ही मतलब हम लोग क्या करें, हमारे जहन में इतना कूट कूट के बॉलीवुड भरा हुआ है ना, इतना बॉलीवुड से प्यार है कि देखिए आज एक बैंकर यहाँ पे आरजे बन गया। जी हाँ, मैं हुआ करती थी एक बैंकर इंडिया में और आज मैं यहाँ पर आपके साथ रेडियो होस्ट बन के आपको एंटरटेन कर रही हूँ, क्योंकि भाई बॉलीवुड हमारे कण कण में है, हमारे रग रग में है और बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ के शो करने में। और ये पिछले एक हफ्ते ऐसे बीते हैं ना मेरे कि मैं नहीं बता सकती हूँ। सो जस्ट अ लिटिल थिंग आई वांट टू शेयर, मैं इतनी सुस्त हो जाती हूँ जब घर पे रहती हूँ, जब बस कोई काम नहीं होता है। एंड जब मैंने शो का मुझे बोला कि ये ना यू हैव टू कम एंड कवर अप फॉर मी टू गपशप गली में, आपको थोड़ा सा आकर के 2-3 घंटे बताना है हमारे साथ, आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड उस दिन से ना बिल्कुल रूटीन अच्छा हो गया, सवेरे उठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खाना पीना खा के और हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर। इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मत पूछिए। शो करने में भी मज़ा आता है और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ और आज फिर बोलूँगी कि हमारा शो हम कैसा कर रहे हैं इसका पैरामीटर सिर्फ इससे हमें पता लगता है कि आपके कॉल्स आते हैं। एंड आई हैव गॉट सो मेनी ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज, सो मच ऑफ लव इन दीज लास्ट 7 डेज दैट आई कांट एक्सप्रेस। सब ने इतनी तारीफ, इतना प्यार किया, बहुत मज़ा आया। और उम्मीद करती हूँ कि फिर मौका लगेगा और फिर आकर के आपको एंटरटेन करूँगी, बट तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश है मेरी इन्फ्लुएंसर बनने की जहाँ पे मैं अपने डेली व्लॉग्स डालती हूँ, आप प्लीज़ फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। अगर आप मुझे और सुनना और देखना चाहते हैं वहाँ पे, आई हैव अ लिटिल डॉटर मी एंड हर, वी जस्ट शेयर आर स्टोरीज, आवर नोक झोंक देयर। एंड इफ यू वॉन्ट, रियली वॉन्ट टू फॉलो अस, बिहारी मॉम इन अमेरिका के नाम से मेरा हैंडल है फेसबुक पे, इट्स आयुषी भूषण। डू फॉलो मी देयर, यू कैन सी अस, यू कैन लिसन टू अस एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर छोटी सी दुनिया।

घड़ी में वक्त हो रहा है 12:26 और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को। आप लोगों से विदा लेने का वक्त हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया है और आपके साथ ब्रेक के बाद भी बनी रहूंगी, तो प्लीज सुनते रहिए फनी श्याम।

0: what? The wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
1: First five customers shopping for $150 gets a free 10-gram silver coin.
0: India Bazaar, the people's store.
2: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभाल लेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.
8: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
9: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और आप अभी भी सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीजिया 104.9 FM पे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं एंड शी इज अर्चना दीदी। अर्चना दीदी इज एन एनलाइटनड मेडिटेशन गुरु स्पीकिंग फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंसेस। She says, I don't teach meditation, but I transmit meditation. She has conducted meditation in the British Parliament last year. And we have the privilege of having her here in our studios. And she has been meditating since the age of four for hours. People say that just sitting in her presence or looking in her eyes, vibes of love and joy around. And mind feels deep silence and relaxation. So, just to let you know, you should not miss meeting her at a 3-day retreat starting from 7 p.m. today. But right now, we have her in our studios. Hello, Archana Didi. Namaste.
10: Namaste.
9: So, mere paas kuch sawal hai aapke liye. We have a couple of questions, in this stressful times of today. How meditation can help, especially the children in higher grade, who are now falling prey to drug as it has reached in schools now in US and many countries?
11: सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी मुझे फन एशिया के स्टूडियो में बुलाने के लिए। आजकल के समय में बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब इतने स्ट्रेस में हम हों तो हम खुद को भूलना चाहते हैं। कोई ऐसा तरीका चाहिए जहाँ हमें लगता है कि हम कुछ देर के लिए सारे स्ट्रेस को भुलाकर हम आगे बढ़ सकें। लेकिन मैं सभी यूथ को ये कहना चाहूँगी कि खुद को भूल जाना या अपने आप से भागना स्ट्रेस को दूर करने का उपाय नहीं है। तो उपाय सिर्फ इतना है कि जब आप अवेयर होते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ड्रग्स लेना या खुद को भूल जाना सोल्यूशन नहीं है। खुद को जानना, खुद को एक्सपीरियंस करना सोल्यूशन है। और इसी के लिए ज़रूरी है आज के समय में कि यूथ मेडिटेशन से जुड़े और मेडिटेशन को जाने।
12: ब्यूटीफुल थॉट, सही कहा है आपने। लेकिन एक और चीज़ है जिससे यू नो पीपल आर टू मच एडिक्टेड टू इट, एंड दैट्स सेल फोन। सो हाउ कैन वन बी फ्री फ्रॉम सेल फोन एडिक्शन विच इज़ कॉमन इशू फॉर ऑल एज ऑफ पीपल। वी सी आवर पेरेंट्स, किड्स, एवरीबडी स्क्रोलिंग देयर स्क्रीन्स, राइट? सो व्हाट डू हैव टू से अबाउट दैट?
11: वेरी ट्रू। आज के टाइम में सभी लोग रियल दुनिया को छोड़कर रील्स की दुनिया में जाना चाहते हैं। सब लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगेन वो खुद को भूलना चाहते हैं। तो उनके लिए आज के टाइम में सोशल मीडिया या सेलफोन्स में स्क्रॉल करना भी एक तरह से एडिक्शन की तरह है कि जहां वो स्टार्ट कब करते हैं उन्हें पता है, लेकिन एंड कहां करना है, खुद को स्टॉप कहां करना है, वो भूल जाते हैं। उनका टाइम कैसे निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। इवन स्टॉप करने के बाद भी थोड़े टाइम के बाद दोबारा उन्हें लगता है कि सारे काम छोड़कर अगेन उन्हें अपने फ़ोन के पास जाना है और स्क्रॉल करना है। तो हम जितना खुद को भूल रहे हैं, अपने आप से जितना दूर जा रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो अगर आपको अपने फ़ोन्स को से दूर रहना है तो आपको सीखना होगा कि आपको अपने टाइम को क्रिएटिविटी के साथ कैसे बिताना है। अपने आप के साथ टाइम बिताना शुरू कीजिए, किसी भी अपनी हॉबी को, पैशन को फॉलो करना शुरू करिए और आप देखेंगे धीरे धीरे जितना आपका माइंड क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा, ये सारी की सारी एडिक्शंस अपने आप दूर होती जाएंगी। सो फॉलो योर हॉबी, फॉलो योर पैशन, किसी भी क्रिएटिविटी में आगे बढ़िए। आप ये देखेंगे आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, सिर्फ एक अच्छी हैबिट्स को चुनना शुरू कर दीजिए, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद दूर होती जाएंगी।
12: लवली एडवाइस। हमें रील की दुनिया से बाहर निकल के रियल दुनिया में आने की बहुत ज़रूरत है। एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर महेश ठक्कर इन आर स्टूडियोज़। एंड महेश जी, आपका स्वागत है पहले तो स्टूडियो में, और आपके पास कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहेंगे।
13: नमस्कार ऑल लिसनर्स, नमस्कार आयुषी, एंड इट इज अवर फॉर्च्यून दैट एनलाइटन्ड सेंट अर्चना दीदी इज इन अवर स्टूडियो। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन अर्चना दीदी आपके लिए। सी इन अवर स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी हैव ऑलवेज ऑफ्टन हर्ड दिस टर्म एनलाइटनमेंट, से नानक एनलाइटन थे, कबीर एनलाइटन थे, मीरा एनलाइटन थे, ओशो एनलाइटन थे। तो एनलाइटनमेंट क्या चीज़ होती है और एनलाइटनमेंट का बेनिफिट क्या है? व्हाट इज बेनिफिट टू पर्सन हु गेट्स एनलाइटन एंड पीपल अराउंड हिम और हर? कैन यू एक्सप्लेन दिस टेक्निकल कंसेप्ट लिटल इन सिंपल वे?
11: एनलाइटनमेंट अर्थात अपने आप को जानना, अपने आप से मुक्त हो जाना। अभी एज अ ह्यूमन हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बंधे रहते हैं। एनलाइटनमेंट का अर्थ है जब हम अपने ग्रीड से, अपनी सेल्फिशनेस चीज़ों से, सारी चीज़ों से हम मुक्त होने लगते हैं, अपने डर से दूर होने लगते हैं। जब हम अपने आप से दूर होकर अपने अंदर अपनी छिपी हुई एनर्जीज को अवेकन कर लेते हैं, उसे कहते हैं एनलाइटनमेंट। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अंधेरे में कोई दिया जला ले, कोई लाइट जला ले। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में होता है तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में आसपास के लोगों पर उसका असर ज़रूर होता है। जैसे सभी लोग अंधेरे में हों और अचानक से हाथों में कोई लाइट लेकर या कोई दिया लेकर आ जाए, ऐसे ही एनलाइटेंड पर्सन है जो खुद दिया बनकर, रोशनी बनकर आता है। उसका अनकंडीशनल लव, उसकी शांति, उसकी हैप्पीनेस पूरी सोसाइटी को चेंज करने लगती है, क्योंकि जो कोई भी उसके पास आता है उसे अनुभव होता है एक गहन पीस का, एक हैप्पीनेस का, एक आनंदा का, एक ब्लिस का और एक ब्लेसिंग्स का।
12: नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स।
13: दीदी, मेरा एक सवाल ये है कि आई हैव हर्ड योर कोट दैट आई ट्रांसमिट मेडिटेशन, आई डू नॉट टीच मेडिटेशन। सो हमने तो सुना है कि मेडिटेशन इज वेरी टफ डिसिप्लिन एंड इट टेक्स ईयर्स ऑल्सो, दैट इज वाई पीपल आर ऑल्सो अफ्रेड टू गो इन। चलो कॉलेज जाते हैं 4 साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे, डॉक्टर बनना है 7 साल में हो जाएंगे, लेकिन इसका तो एंड ही नहीं। लोग ऐसा बताते हैं कि 50-60 साल या जन्मों लग जाएंगे, तो फिर मेडिटेशन जर्नी से लोग डरते हैं। और आप बोलते हैं ट्रांसमिशन होता है, तो किस तरह से ये ट्रांसमिशन होता है? और अगर ट्रांसमिशन ही होता है तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप जैसे एनलाइटेड व्यक्ति की प्रेजेंस में बैठ जाए और सब हो जाएगा, तो हमें क्या कुछ करना क्या है फिर?
11: ईश्वर सब जगह है, आपको किसी एनलाइटेड पर्सन की ज़रूरत नहीं है फिर तो। ईश्वर हर जगह है और उनकी प्रेजेंस ही आपको चेंज कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता तब तक जब तक कि आप उसके लिए तैयार नहीं होते। मेडिटेशन के लिए जन्मों नहीं लगते, मेडिटेशन के लिए 1 सेकेंड का करोड़वां हिस्सा बहुत होता है। जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज मोर देन इनफ, मगर सिर्फ आपको जितना टाइम लगता है वो तैयारी के लिए लगता है कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं। तो मेडिटेशन इज अ जर्नी कि आप तैयार हो सकें और ये जान सकें कि आप हर समय स्टेट ऑफ मेडिटेशन में हैं। आपको कुछ सीखना नहीं है, आपको सिर्फ सीखना इतना ही है कि जो कुछ आपने अभी तक अपने भीतर नेगेटिव कलेक्ट किया हुआ है उसे दूर करना है। बस मेडिटेशन की जर्नी खुद को क्लींस करने की, प्यूरिफाई करने की जर्नी है। जितना आप अपने आप को प्यूरिफाई करते जाते हैं, आपको पता चलता है कि मैं हर समय स्टेट ऑफ मेडिटेशन में हूँ, हर समय उस यूनिवर्स की ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ ही हूँ। तो मेडिटेशन में जन्मों नहीं लगते, आपको तैयार होने में टाइम लगता है। और आपको तैयार होने में कितना टाइम चाहिए, बस इतना ही आपको देखना है।
12: थैंक यू, लवली एडवाइस। एंड यस, प्लीज डू नॉट मिस मीटिंग हर, यू नो, फॉर दिस 3-day रिट्रीट फ्रॉम 7 PM टुडे। एंड आई शुड टेल यू दैट अभी स्टूडियो का जो माहौल है ना, वो बड़ा ठहराव जैसा हो गया, बहुत ही ठहरा हुआ, बहुत ही लाइट, बिकॉज इनकी बातें इतनी अच्छी हैं कि सुन के ही मन को शांति मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी इनके 3 दिन के रिट्रीट में ऐसा ही महसूस होगा। Thank you, Archana Didi, for coming to our studio. And thank you, Mahesh Ji. It was lovely having you here.
13: Thank you, listeners. And, pranam, Archana Didi. आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत चीजें क्लियर की। आशा रखते हैं कि बहुत लोगों को आपकी प्रेजेंस में डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे।
11: Thank you.

बड़ा ही मजा आ रहा है शो करके आप लोगों के साथ, इसीलिए आधे घंटे का शो एक्सटेंड कर लिया हमने. और अभी आपने सुना था अर्चना दीदी को, और मेरे पास एक कॉल भी आई थी जहाँ पे हमारे लिसनर जानना चाह रहे थे कि ये जो रिट्रीट है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है. सो लेट मी टेल यू, इट्स अ 3-day रिट्रीट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, 7th, 8th, and 9th August को है. सो ऑन 7th August इट्स हैपनिंग एट भारतीय निवास, फ्राइडे 6 PM to 8:30 PM. 8th August को इट्स हैपनिंग एट श्री रघुनाथ टेम्पल इन प्लेनो फ्रॉम 10 AM to 12 PM. एंड देन ऑन 8th August अगेन इट्स हैपनिंग फ्रॉम 6 PM to 9 PM एट DFW टेम्पल एकता मंदिर. एंड ऑन 9th August इट्स हैपनिंग ऑन इन श्री रघुनाथ टेम्पल अगेन फ्रॉम 10 AM to 12 PM. अर्चना दीदी विल बी हियर फॉर अ माइंडफुल हैप्पीनेस एंड वेलनेस वर्कशॉप. तो जिन लोगों ने भी लोकेशंस नहीं नोट की थी वो जान ले, 7th, 8th, and 9th August को ये इवेंट होने वाला है. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है, 10 मिनट है मेरे पास. अगर कोई आपकी फरमाइश है तो कॉल करिए और दीजिए. आज मैं 1 बजे तक हूँ. मैंने गपशप गली में थोड़ी सी जगह बना ली थी फ्राइडे तक, और मीठू का शो कवर कर रही थी. अब मीठू फिर से मंडे को वापस होंगी और आपको अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ और प्यारे प्यारे गानों के साथ एंटरटेन करेंगी. फिलहाल अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मैं ले रही हूँ 1 बजे तक. कॉल करिए और अपनी फरमाइशें दीजिए.

So here was this beautiful song from the movie जब वी मेट, और अब हमारे मिलने का समय खत्म हो रहा है. मैं जा रही हूँ घर की तरफ, और स्टूडियो में आपको मिलेंगी रिमिता, और उनकी प्यारी आवाज़ को आप अभी सुनेंगे. तो भाई बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ ये पूरा हफ्ता बिता करके. उम्मीद करती हूँ जल्दी ही आप मुझे फिर से सुन पाएंगे फनीशा पर. आज का वक्त कैसे बीता बिल्कुल पता नहीं लगा. मंडे को मीठू होंगी यहाँ पर गपशप गली में, और घूम फिर के आएंगी, मज़े से आपके साथ शो करेंगी और आपको बॉलीवुड गाने सुनाएंगी, क्योंकि फनीशा पे बॉलीवुड गानों का सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है. और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ शो करके, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स एंड ऑल योर लव दैट यू हैव गिवन मी टुडे. एंड या होपिंग टू सी यू गाइस सून. तो चलिए विदा लेते हैं, रिमिता को बुलाते हैं, वो आएंगी और आपके साथ गपशप करेंगी. और आज के लिए मुझे बाय बोलने का समय हो चुका है, बाय बोल रही हूँ. एंड सी यू ऑल टुमारो. फ्राइडे है, एंजॉय करिए, पार्टी हार्ड, सैटरडे संडे अच्छे से मनाइए. सी यू ऑन मंडे.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, X-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
0: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
11: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया।
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया।
13: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
15: Visit www.sanadainc.com today.
16: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
17: Ruko jara, sabar karo.
18: अगला गाना
14: फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

नमस्कार DFW, कैसे हैं मेरे प्यारे बॉलीवुड लवर्स। दिस इज रुमिता और शुरू हो चुका है फिल्मी फ्राइडे। और फ्राइडे का मतलब सिर्फ एक वीक का लास्ट वर्किंग डे नहीं है भाई लोग, फ्राइडे का मतलब है ऑफिस में सबके कंप्यूटर ऑन तो है पर दिमाग ऑलरेडी वीकेंड पर है। किसी ने ऑलरेडी डिनर रिजर्वेशंस कर लिए है, कोई मूवी टिकट्स देख रहा है और कुछ लोग तो बस कैलेंडर देख के खुश हो रहे हैं कि यार दो दिन हमारे अलार्म नहीं बजने वाले, उससे आज़ादी मिलनी है क्योंकि फ्राइडे है। तो हम भी पूरे फिल्मी मूड में आ चुके हैं एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ फिल्मी फ्राइडे। आज के दो घंटे बॉलीवुड के नाम, यानी कि 12:30, जनरली 12:30 होता है बट अभी से लेके 2:30 बजे तक, दो इस टाइम को हम बॉलीवुड के नाम कहते हैं और बात करेंगे नई मूवीज की, एवरग्रीन डायलॉग्स की, बॉलीवुड ट्रिविया, वीकेंड वॉच लिस्ट और सबसे जरूरी आपकी स्टोरीज की। मैं चाहती हूँ कि आज का शो सिर्फ मेरा ना हो, ये हम सब का शो है, आपका, मेरा, आपके पड़ोसी का, आपके कुलीग का। इसीलिए थ्रू आउट द आफ्टरनून हमारे नंबर्स खुले हैं। स्टूडियो का नंबर इज 9722355555। सवाल मेरे होंगे पर जवाब आपके। तो शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल का क्योंकि फिल्मी फ्राइडे है भाई। आपका अगर ये आपकी लाइफ एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता, सोचिए और कॉल कीजिए मुझे क्योंकि वीकेंड ऑफिशियली शुरू तो हो चुका है, बस एक ब्लॉकबस्टर की कमी है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फनी शो रेडियो 104.9 FM।

18 minutes past 1 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funny Shower Radio. मैं हूं रुमिता and this is a Filmy Friday, जहां पे चल रहा था millennials का favorite this song when it released back in 2003, I believe. और क्या धूम मचाई थी साथिया ने, oh, still can't forget. वैसे Filmy Friday this is, और जैसे कि मैं हर हफ्ते बोलती हूँ कि ये शो ना थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसका मोटिव ये है कि आप अपना जो वीकेंड है वो कैसे बिताएंगे उसकी प्लानिंग मेरे पे छोड़ दीजिए. क्योंकि आप अगर इस शो को सुन लेंगे तो वॉच लिस्ट, वीकेंड में क्या खाएंगे, वीकेंड में कहाँ घूमना है, क्या क्या इवेंट्स है, सब आपको यहीं से पता चल जाएगी. तो अगर प्लान है आज शाम को यानी कि फ्राइडे को अपने दोस्तों के साथ अपने बचपन में लौटने का यानी कि नॉस्टैल्जिया पे जीने का, एंड इफ यू वांट टू गो बैक टू द फ्लड ऑफ मेमोरीज व्हिच यू क्रिएटेड व्हाइल यू वर हैविंग दोज यू नो चना पूरी और चाट्स जो बचपन में हम खाते थे बैक इन अपने अपने देश में, देन इट इज वन लोकेशन हैज अराइव्ड और क्या बॉम्ब गिरी है फ्रिस्को में, एंड दैट इज होको. यस, द प्रोनाउंसिएशन इज होको. आई नो बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एम्बिग्यूटी है इस बात में कि आखिर इसको बोलते क्या है, बट एक्चुअली में इट्स होको एंड दे हैव बीन फुलफिलिंग और सैटिएटिंग द टेस्ट एंड फ्लेवर्स ऑफ इंडियंस अक्रॉस जनरेशंस. और अभी फ्रिस्को में इट इज देयर, बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है इसका प्रेस्टन रोड में. और इसकी जैसे कि मैंने कहा कि चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज और उनकी फेमस होको कोल्ड कोको जो है, I can actually swear by the chaat which I had दो हफ्ते पहले, and trust me, it actually brings back the memories जो हम इंडिया में खाते थे. Then definitely plan for Hoko today, or for details of the menu, visit hoko.us. The hoko.us is the website that you can get all the details about it, and they proudly say कि come hungry and leave with the taste of India. Keep listening to 104.9 FM Funny Shower Radio. This is your Filmy Friday with Rumita.

You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is a Filmy Friday with me, Ramita. और आज ऑफिस में एक अलग सी पॉजिटिविटी नजर आती है यार. बॉस भी थोड़ा रिलैक्स्ड है और हम जो एम्प्लॉयज है थोड़े खुश होते हैं यार, क्योंकि कॉफी भी फ्राइडे को ज्यादा टेस्टी लगती है. वैसे एक ऑब्जर्वेशन शेयर करूँ आपके साथ, मंडे को लोग बोलते हैं कि यार वीकेंड इतनी जल्दी खत्म हो गया, और फ्राइडे इस वक्त वही लोग बोलते हैं यार वीकेंड कैसे स्पेंड करे, इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता. वैसे मुझे लगता है कि वीकेंड प्लानिंग भी एक आर्ट है. आपको क्या लगता है? तो कुछ लोग ऐसे हैं ना, इट गेट्स डिवाइडेड कि सैटरडे मॉर्निंग हम जिम जाएंगे, और दूसरा बोलता है कि सैटरडे मॉर्निंग हम 11 बजे तक सोएंगे. और सच बताओ, सेकेंड प्लान ही यूजली जीत जाता है. आई नो, मैं करूंगी आपकी प्लानिंग. बने रहिए हमारे साथ, एक ब्लॉकबस्टर गाना, उसके बाद लौटते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस वीकेंड आपका फिल्मी वॉच, वेदर इन थिएटर्स और इन ओटीटीज क्या होगा. विल डिस्कस इट इन अ डिटेल. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फिल्मी फ्राइडे विद मी रमिता.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
4: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
1: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh... उमर ख्वाजा।
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो।
1: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.

You're listening to 104.9 FM Funny Show Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita. जहाँ पे वक्त हो चुका है कि मैं आपको बता दूँ कि इस वीक के रिलीजेस क्या है. But unfortunately, देसीज इस वीक कोई भी मेजर बॉलीवुड या फिर हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है यहाँ पे. और उसका कारण भी है क्योंकि भाई देख लो, पिछले हफ्ते रिलीज हुई है स्पाइडर मैन, तो उसका जो इफेक्ट है वो इस वीक तक भी चलेगा ना. जो लोग मिस कर दिए कि लास्ट वीक अपने फैमिलीज के साथ या अपने बच्चों के साथ अपने आप को थिएटर में ले नहीं जा पाए, वो लोग इस वीक जाएंगे, इस वीकेंड जाएंगे. तो कंपटीशन इतना हाई है भाई कि नहीं. इनफैक्ट देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड प्रहार स्टारिंग राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जो रिलीज होने वाली थी इस वीक, विच इज सोली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द उज्ज्वल निकम स्टोरी. आई मीन इट्स बेस्ड ऑन द उज्ज्वल निकम लॉयर, जो कि यू नो 2611 अटैक कसाब के लिए दैट वाज द स्टोरी. बट दैट फिल्म गॉट पोस्टपोन्ड इस वीक रिलीज के बाद. इस वीक रिलीज नहीं हो पाई ये, एंड दैट वाज अ थिंग कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है. इनफैक्ट अगला वीक जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी हैवी वीक, क्योंकि आवार अपन टू और बंटवारा दोनों फिल्म्स रिलीज होने वाली है. दैट इज दैट वुड बी अ टफ वीकेंड नेक्स्ट वीक. बट निराश ना होइए, आपका वीकेंड प्लान अभी भी मेरे साथ है. एक बहुत ही पॉपुलर ओटीटी चैनल में रिलीज होने वाली है मैं वापस आऊंगा. जी हाँ, आज है उसका डिजिटल प्रीमियर. और अगर आपने मेरी तरह भाइयों दोस्त लोग बोले थे बार बार कि आप होके आओ, आप होके आओ, चलो हमारे साथ, बट आई मिस्ड इट. तो अगर आपने मेरी तरह मिस कर दिया थिएटर में मैं वापस आऊंगा, यू कैन वॉच इट टुडे विच इज ऑलरेडी रिलीज्ड. सो जल्दी जल्दी रैप अप करो काम, घर पहुंचो और फैमिली के साथ एंजॉय करो. मैं वापस आऊंगा स्टारिंग शर्वरीन, वेदांग रैना, दिलजीत दोसांझ एंड ऑब्वियसली नसीरुद्दीन शाह.

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio और फिल्मी फ्राइडे में वक्त हो चुका है आपके गिव अवे जीते का. तो ऑल यू हैव टू डू इज टू प्ले द सिंपल गेम विद मी, विच इज लाइक आई विल बी टेलिंग यू एक बैडली एक्सप्लेन्ड प्लॉट. जी हाँ, एक क्लू मिलेगा आपको, एक नहीं बहुत सारी क्लू मिलेगी, रादर एक प्लॉट मिलेगा विच इज राइट रैंडमली प्रेजेंटेड हियर इस शो में, और आपको गेस करना है वो मूवी. और अगर आपने सही आंसर दे दिया देन यू विल गेट अ 10% $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को. तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि प्लॉट आने वाला है. सो द प्लॉट इज एक बाप अपने बेटे के लिए एक वीडियो गेम क्रिएट करता है. वीडियो गेम में एक विलेन है जो विलेन खुद उस बाप को मार डालता है, और फिर उसका जो बेटा है वो उसी वीडियो गेम का एक और कैरेक्टर को लेके अपने बाप के डेथ का बदला लेता है, बाप के मौत का बदला. दिस इज द प्लॉट ऑफ द मूवी दैट आई हैव ट्रूली बैडली एक्सप्लेन टू यू. ऑल यू नीड टू डू इज कॉल मी इन द स्टूडियो 9722355555 एंड बताइए कि ये कौन सी मूवी का प्लॉट है. एक बाप एक वीडियो गेम बनाता है बेटे के लिए और उस वीडियो गेम का विलेन उस बाप को ही मार डालता है, एंड रेस्ट बाप की मौत का बदला. बता पाओ तो जीतोगे $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. जी हाँ, फिल्म का नाम है रावण और काफी लोगों ने कॉल किया मुझे एंड सही जवाब दिया, बट यू नो द विनिंग कॉल वॉज द फर्स्ट वन हु गेव द राइट आंसर, आई मीन द अर्लीस्ट एंड द राइट आंसर. सो इट वॉज अंकित अग्रवाल जी, कंग्रेचुलेशंस. आपको मिलता है ये $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. वैसे फन पिज्जा किचन में ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा फ्लेवर्स या यू नो टाइप्स लॉन्च हो गए, अलग ही कैटेगरी मिल रही है विच यू शुड ट्राई बिकॉज उनकी जनरली विच इज फेमस, मेरी फेवरेट है तंदूरी चिकन पिज्जा, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज मैक्सिकन ट्विस्ट जैसे कि फ्यूरी पोलो लोको, सी फूड पैक्ड सनोर कैमरॉन और लोडेड मूचो माचो पार्क. येस, एवरी बाइट इज बोल्ड एक्साइटिंग एंड इज मेड टू इम्प्रेस यू एट योर टेस्ट बड. सो हैड टू Fun Pizza Kitchen Frisco and taste the new obsession by yourself. New flavors hai, naya obsession bhi milega. Details ke liye funpizzakitchen.com is your destination. Keep listening to Filmy Friday. This is Rumita. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio.

8 minutes past 2 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio, and this is Filmy Friday with me. Me kaun? Matlab main kaun? This is Rumita, and I welcome you to the final segment of my show. Yani ki 2:30 baje tak hai aapka aur mera saath. Is segment mein rahenge Bollywood flashback ki baatein aur bhi everything about films and Bollywood. Magar agar aap एक बिजनेस ओनर है और अभी मुझे सुन रहे हैं एंड लेटली आप सोच रहे हैं कि आपके बिजनेस के लिए कोई स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी, यानी कि जो हमारी एनर्जी होती है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम कहते हैं यहाँ पे, यू कैन ट्रस्ट द तारा कमर्शियल एनर्जी विच इज प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002. यानी कि कंपैरेटिव रेट्स मिलेगा आपको, रिलायबल सर्विस मिलेगा और कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस. विजिट कीजिए taraenergy.com और यू कैन कॉल 8444282808. दैट्स 8444482808. तारा कमर्शियल एनर्जी इज द सोल्यूशन फॉर योर कमर्शियल एनर्जी नीड्स. फिलहाल दो बैक टू बैक सुपर हिट ट्रैक्स, यानी कि हमारे स्टेशन में तो गाने सुपर हिट्स बजते ही है. देखते हैं ये जो ट्रैक बैक टू बैक बज रहे हैं, ये आपके फेवरेट्स है कि नहीं.

You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio and this Filmy Friday afternoon वक्त है Filmy Friday का Bollywood flashback segment का. So आज चलते हैं 1988 में एक फिल्म जिसने रोमांस का मतलब ही बदल दिया. आमिर खान, जूही चावला और दैट इनोसेंस वाला रोमांस जो है ना, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, और क्या ही कहूँ मैं. और उस फिल्म के गाने लाइक पापा कहते हैं ए मेरे हमसफर आज भी बजते हैं, एंड वी कैन ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड टू दोज सॉन्ग्स व्हेन दे प्ले. और पता नहीं, बहुत ऑर्गेनिकली हम गाने भी रखते हैं उन गानों को. तो मेरा सवाल हर बॉलीवुड प्रेमियों से एक ही है कि आज अगर कोई भी पुरानी मूवी आप री रिलीज करना चाहते हैं थिएटर्स में, तो वो कौन सी होगी. वैसे ये फिल्म तो कयामत से कयामत थी, लाइक अर्ली 90s, लेट 80s, इट क्रिएटेड अ बज. जैसे कि मैं कह रही थी, रोमांस का डेफिनेशन ही बदल दिया. बट फॉर यू, इफ यू वॉन्ट टू री रिलीज अ फिल्म इन थिएटर्स अगेन, वॉट वुड बी एंड वाई वुड दैट मूवी बी? कॉल मी एट 972-235-5555. आपसे तो आंसर्स मुझे लेने ही है. वैसे मैं आपको एक गाने के माध्यम से बता देती हूँ कि इफ आई वॉन्ट अ फिल्म टू गेट रिलीज अगेन, एंड दैट वुड बी द नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम प्लेइंग फ्रॉम. कीप लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज आरजे रमिता.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. और जैसे कि इस गाने को प्ले करने से पहले आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द फिल्मी फ्लैश बैक, यानी कि कोई मूवी अगर आप इफ यू वॉन्ट टू री रिलीज नाउ, सो विच मूवी वुड दैट बी? वेल, काफी आंसर्स आ रहे हैं, अभी भी मेरे कॉल्स ब्लिंक कर रहे हैं, अभी भी कॉल्स आ रही है, बट सेजल जस्ट कॉल मी अप एंड शी सेड वेरी कोइंसिडेंटली दिस थिंग हैपेंड हाउस होल्ड के उन्होंने अपने बच्चों को, अपने टीनेज बच्चों को कुछ कुछ होता है दिखाई एंड दे हैड सो वेरी डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द क्लाइमैक्स विच हैपेंड. यानी कि उनका मानना है कि काजोल वॉज सो, आई मीन अंजलि वॉज सो अनफेथफुल टू अमन. अभी क्या करे भाई लोग, शादी के मंडप पे शाहरुख खान यानी कि राहुल मिल गया है. यू डोंट नो द इफेक्ट ऑफ द टीनेज क्रश दैट गर्ल्स यूज, आई मीन टीनेज लव दैट वी यूज टू हैव फॉर राहुल ड्यूरिंग दोज डेज. बट That unfaithfulness, ये जो tag दे दिया है बच्चों ने, अब उनको कैसे समझाए the difference of we millennials faced during those years when कुछ कुछ होता है released. I wish we could explain the love for Bollywood, how you know dharma films changed and how they have evolved through years and how the entire dynamics of romance has changed since those time. But yes, कुछ कुछ होता है is our go-to even now. I mean, one of my favorite movies. I want to know what your opinion about it is. Filhal, sunte rahiye about more Bollywood songs and stories. See it?

इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, शब्बा खैर। मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते, अगले फ्राइडे ऑन फिल्मी फ्राइडे। दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज शो। जाते जाते एक खूबसूरत गाना आप सभी के लिए। एंजॉय एंड हैव अ लवली वीकेंड अहेड।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
10: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
10: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
11: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
10: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
12: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Thank you, Rimita, for an absolutely beautiful show as always. Music ka silsila Fun Asia Radio pe aapke liye jari rehta hai 24/7, 365 days a year. हम रहते हैं आपके साथ और आप भी हमारे साथ रहते हैं 972-235-5555 के थ्रू. दैट इज द नंबर टू द स्टूडियो. अगर आपने अब तक सेव नहीं किया तो क्विक डायल, फास्ट डायल, जिसमें भी डालना है आपने डाल लीजिए इसको, क्योंकि अगर आपको फन एशिया को कॉल करना है तो, जो कि मेरा ख्याल है कि करते ही रहना चाहिए आपको, तो दिस विल रियली हेल्प यू. बच्चा पार्टी आज है फ्राइडे 3 PM टिल 4:30 PM. आई विल बी हैव विद यू विद किड्स जंक्शन. और 4 से 4:30 तक आपके लिए स्पेशल सेगमेंट ऐड किया था इस समर में. होप कर रहे हैं कि उसको हम एक्सटेंड कर सकें. एवरी फ्राइडे आई हैव अ न्यू आरजे हु विल को होस्ट विद मी राइट हियर इन द स्टूडियोज ऑफ फन एशिया. और पिछले तीन चार हफ्तों से हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे आरजेज आ रहे हैं. और आप याद रखिए, जब हमारी पोस्ट आती है जिस फ्राइडे की, हर फ्राइडे हम अपनी पोस्ट डालते हैं एक नए आरजे हमारे छोटे नन्हे मुन्ने से आरजे के साथ. और आप भी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमारे साथ को होस्ट करे, तो अपना बच्चे का नाम, एज और क्लास लिख के, ग्रेड लिख के हमें भेज दीजिए. उस पोस्ट में कमेंट कीजिए एंड देन आवर टीम विल गेट बैक टू यू. बट फिलहाल इट इज टाइम फॉर मिक्स पॉट. आई हैव अबाउट 24 मिनट्स वेयर आई एम गोइंग टू प्ले सम पुराने गाने एंड सम नए गाने फॉर यू. सो दिस इज मिक्स पॉट राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून.

दिस आइकॉनिक नंबर टेकन फ्रॉम द मूवी रॉकी. जी, रॉकी फिल्म में हमें नजर आए थे संजय दत्त, साथ थी टीना मुनीम, रीना रॉय, शक्ति कपूर, राखी, अरुणा ईरानी. और ये जो है फिल्म संजय दत्त की डेब्यू फिल्म जो है मानी जाती है ऑफकोर्स, और स्टार स्टडेड डेब्यू फिल्म मिली थी संजय दत्त को. एंड व्हाट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दिस मूवी हैड. नॉट ओनली आ देखे जरा, बल्कि क्या यही प्यार है, या आओ मेरे यारो आओ, एंड सो मेनी वो दोस्तों को सलाम, और भी बहुत सारे खूबसूरत गाने थे इस फिल्म में. तो जी, मिक्स पॉट में कुछ एक नया पुराना गाना आपके लिए प्ले करती हूँ, और उसी से किसी लव से निकल के कोई नया गाना आपके लिए प्ले करती हूँ. सो देखें जरा, आ देखें जरा से कुछ मुझे बड़ा मजे का गाना याद आ रहा है, मुन्ना भाई MBBS से, वो आपके लिए प्ले करूंगी. लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हैं, तो ड्रीम होम मॉर्गेज इज द प्लेस वेयर यू कैन गो and get the best loan option. जी हाँ, बेहतरीन लोन ऑप्शन आपको देते हैं. 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं टू अचीव देयर होम ओनरशिप ड्रीम. और जो भी आपका लोन का प्रोसेस होता है, उसको आपके लिए पर्सनलाइज भी किया जाता है, और उसको स्ट्रेस फ्री और स्मूथ भी बनाया जाता है. दे आर लाइसेंस्ड इन 50 स्टेट्स, एक्सपीरियंस टीम है उनकी, जो कि आपको राइट लोन ऑप्शन क्रिएट करके देते हैं या टेलर करके देते हैं. सो वेदर यू आर लुकिंग फॉर योर फर्स्ट होम, यू आर लुकिंग टू रीफाइनेंस, यू आर लुकिंग टू upgrade, Dream Home Mortgage is the place where you need to start. Give them a call, 972-245-5626. 972-245-5626 है जी Dream Home Mortgage का number, या फिर आप उनकी website visit कर सकते हैं, which is dreamhomemortgage.com. Once again, the website is dreamhomemortgage.com. और आ देखें जरा से, देख ले.

0: सीख ले।
1: जी हाँ, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। डीलिंग विद पेपर वर्क, लीगैलिटीज, द इंश्योरेंस कंपनीज, एज वेल एज द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, जो हमें यूजुअली बहुत सारे टाइम पे पता ही नहीं होती कि कैसे सिनेरियो में कैसे क्या लॉज हैं एंड ऑल दैट। सो आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ योर physical as well as mental well-being, and let attorney Omar Khwaja and his team handle the rest for you. Yani ke they will fight your case for you, they will get you the best compensation that you deserve, and the best part is that you don't have to pay anything until you win the case. So aapke liye this is a win-win situation, especially in this stressful time. So if you are going through something like that, or this, or you know of someone who is going through something like this, to aap attorney Omar Khwaja ko call kijiye for free consultation. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज अटर्नी ओमार, OMAR, attorneyomar.com. You tuned into Mix Pot right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. I have about 12 more minutes and some beautiful songs lined up for you. पुराने गाने की बारी है जी।

आशा भोसले जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जी। राजेश खन्ना और तनुजा पे पिक्चराइज्ड और रविकांत नागेश ने इसको डायरेक्ट किया था। इट वाज अ सुपर हिट मूवी एंड एवरीवन लव्ड द मूवी से ज्यादा गाने, जैसे कि चला जाता हूँ किसी की धुन में, या फिर ओ मेरे दिल के चैन, या फिर दीवाना लेके आया है, या फिर आओ ना गले लगा लो ना, या फिर मेरे जीवन साथी। मतलब कितने गाने एक ही फिल्म में, कितने सुपरहिट गाने जो है वो समाएंगे, वो सारे के सारे मेरे जीवन साथी में मौजूद थे। सो मिक्स पॉट में ऐसा ही सिलसिला है, एक पुराना गाना और उससे कुछ लफ्जों से मैं निकालती हूँ कोई नए गाने का, जो मेरे जहन में उस गाने को सुन के नया गाना आता है वो आपके लिए प्ले करती हूँ। अगला गाना प्ले करने लगी हूँ आओ ना से, आओ ना फ्रॉम ऐश्वर्या टू विवेक ओबेरॉय फ्रॉम द मूवी क्यों हो गया ना। लेकिन उससे पहले अगर आपको भूख लगी है और आपको घर जैसा खाना खाना है लेकिन घर पे बिल्कुल नहीं बनाना, तो कोई मसला नहीं, तंदूरी फ्लेम पे जाइए जो कि गार्लन में लोकेटेड है। आपके तमाम नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि तंदूरी प्लैटर्स, करीज, नान्स, कबाब्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लन। द बेस्ट पार्ट इज इट इज अवेलेबल विद होम स्टाइल पंच, सो डू विजिट।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
4: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
5: जीत उनकी होती है, जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
7: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
8: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
9: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
8: Fear not. We have the perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
18: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
17: कहाँ?
19: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
20: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
21: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years or older to gain.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: Call the SBA Loan Experts.
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: Call the SBA Loan Experts.
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: Call the SBA Loan Experts.
3: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
5: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
6: First five customers shopping for $150 gets a free 10 gram silver coin.
5: India Bazaar, the people's store.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो।
13: जिंदगी एक रंगमंच है
14: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
10: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
15: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime, 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
16: Beta, 95% aaye?
17: Haan mummy.
16: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
18: Mera?
16: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
18: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने।
12: AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

You're tuned into Kids Junction. गाने तो आपकी मर्जी के जी चल ही रहे हैं बच्चा पार्टी, लेकिन आप रेडी हो जाइए बिकॉज आर नेक्स्ट चिल्ला पार्टी आरजे इज इन द स्टूडियो एंड शी विल बी को होस्टिंग विद मी 4 till 4:30 PM इज वेन वी विल डू चिल्ला पार्टी राइट हेयर ऑन किड्स जंक्शन. बट बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू, आई हैव टू टेल यू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026 हैपनिंग ऑन सैटरडे ऑगस्ट द 15th 2 PM ऑनवर्ड्स ही होगा जी कमेरिक सेंटर फ्रिस्को में. और जो बेस्ट पार्ट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 बजे मतलब इतनी गर्मी, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं. दिस इज एन इंडोर इवेंट एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. तो कोई टिकट नहीं आपने खरीदना, इट इज जस्ट लाइक आइए और एंजॉय कीजिए. ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, और अगर आप शॉपिंग पसंद करते हैं तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए. सो ब्रिंग योर फ्रेंड्स, ब्रिंग योर फैमिली एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. दिस इज IANT Anand Bazaar 2026.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
7: Kaun sa?
6: Arre, wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
7: अरे सारे तो सेम है.
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
7: ओ हाँ, ये तो अलग है.
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा.
8: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
10: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
8: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Uthaa le re deva, uthaa le re baba, ye boxes uthaa le re.
12: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
11: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
12: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट.
11: इंडिया तक?
12: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
8: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
14: Hocho.
15: Hoko.
14: Hocho.
15: Hoko.
14: Hocho.
15: It's Hoko.
16: अरे बस भी करो यार.
15: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
16: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
8: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
17: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
13: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
18: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
19: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
20: कितने आदमी थे?
21: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
3: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में? सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions.

एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्राइमरी केयर फिजिशियन या डॉक्टर, आपको कोई ऐसे चाहिए जो आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड करें, तो ऐसा यू नो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे. 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट आपको देते हैं बिकॉज दे ट्रूली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट इज गोइंग ऑन विद यू. दे आर गोइंग टू स्पेंड दैट टाइम विद यू एंड 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक टू कंप्लीट योर एनुअल फिजिकल्स. चाहे आप एंजाइटी केयर चाहते हो, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हो आपके, B12 विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग आपने करानी हो, या कोई भी और आपकी सेहत से रिलेटेड मामला हो, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर विल पैशनेट ऑफ द वेरी पैशनेट अबाउट योर हेल्थ एंड दे विल स्पेंड दैट टाइम विद यू. सो स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे बाय गिविंग देम अ कॉल. दैट नंबर इज 214-666-6259. उनका नंबर. दिस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. दे विल स्पेंड दैट टाइम विद यू दैट यू वॉन्ट और यू डिजर्व that your doctor should spend with you. And with that, it is time now to give you the currency update. Ke US dollar kahan stand kar raha hai with respect to other currencies in the world. Friday, August the 7th, 4:42 p.m. in the studio. And according to xrates.com, euro is work trade kar raha hai 0.86 pe. British pound 0.74, jabke Indian rupee 95.12 pe stand kar raha hai. कनेडियन डॉलर 1.39 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 277.78 पाकिस्तानी रुपीज अ ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपालीज रुपी 152.27 जबकि बांग्लादेशी टका 123.77 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. आफ्टर द सॉन्ग आई विल टेल यू द गोल्ड प्राइस अपडेट.

एंड विद दैट आई मस्ट टेल यू जी कि अगर आपका बच्चा जाता है थर्ड थ्रू फिफ्थ ग्रेड तो फिर नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी कैन हेल्प देम बिल्ड द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स दैट दे विल यूज for a lifetime. Created by experienced coaches Sunhi Simon Santiago and Audra Langston, who have mentored debate champions, valedictorians and Ivy League graduates, this online program is designed to help your young minds grow into confident leaders. To mazid jankari hasil karne ke liye aapko kya karna hai ji, aap unko call kar sakte hain ya aap unki website visit kar sakte hain. Call karne website visit karne ke liye note kijiye nextgenspeakersacademy.com nextgenspeakersacademy.com या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं विद ऑल योर क्वेश्चंस. दैट नंबर इज 214-724-2867. वंस अगेन द नंबर इज 214-724-2876. सो गिव योर चाइल्ड द कॉन्फिडेंस टू लीड टुमारो स्टार्टिंग टुडे विद नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी. और इसी के साथ आई मस्ट टेल यू द ट्रैफिक अपडेट जी. और लकीली हमें ट्रैफिक में कोई कोलिजन नजर नहीं आ रहा. दैट इज ऑलवेज अ गुड न्यूज. देर इज ओनली अ डिसेबल्ड व्हीकल दैट आई कैन सी ऑन IH30 टुवर्ड्स 35 ईस्ट नॉर्थ बाउंड रैंप वेस्ट बाउंड. तो ये इस डिसेबल्ड व्हीकल की वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी ऑन द रोड्स ऑफ डैलस. सो दैट इज ऑफकोर्स ऑलवेज अ गुड न्यूज, स्पेशली ऑन अ फ्राइडे इवनिंग. सो आप इंजॉय कीजिए जहां भी आप जा रहे हैं, रिलैक्स करके जाइए. एंड दिस ट्रैफिक फोरकास्ट या ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा.

0: अबे ओए
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: और जी इसी के साथ इट इज ऑलमोस्ट टाइम टू से माय बायस टू यू, बट उससे पहले आपको बताऊं कि आ रहा है रक्षाबंधन, और इस रक्षाबंधन फनीचर रेडियो एंड चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट सुनना चाहते हैं आपकी और आपके सिबलिंग की कोई बेहतरीन याद. सो इफ यू हैव एन अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर देन यू कैन बी अ विनर. क्या जीतेंगे आप, पहले मैं आपको ये बताती हूँ. एक्साइटिंग डेली प्राइजेस जैसे कि डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट entertainment as well as resort stays, and you can also be the grand prize winner, which can will be an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durant. So aapko kya karna hai, ek minute ka voice memo ya voice note record karna hai aapne, sharing your story, unforgettable story with your sibling, and you have to WhatsApp it at this number. The number is 214-837-7147 214-837-7147 पे व्हाट्सएप कर दीजिए ये वॉइस नोट, सो दैट योर एंट्री कैन बी रजिस्टर्ड एंड देन दे विल विन द पिक द विनर्स एंड यू कैन रिसीव डेली प्राइजेस और बी द लकी ड्रॉ द ग्रैंड प्राइज विनर. फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आप हमारे फन एशिया के सोशल मीडिया पेजेस चेकआउट कर सकते हैं. चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट, दिस इज ड्यूरेंट, दिस इज अ प्लेस वेयर beautiful memories are made. You have to remember that you must be 21 years or older to participate. Terms and conditions apply. So please play responsibly. और अगर आप मेरे साथ कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो अगले दो तीन मिनट में फोन लाइंस ऑन रखूंगी, ऑन एयर लूंगी आपको. 972-235-5555 इफ यू हैव अ स्टोरी टू शेयर अबाउट योर सिबलिंग, आई एम ऑल ईयर्स. एंड यहां से आपकी एंट्री डायरेक्टली मैं भिजवा सकती हूँ. सो इट्स योर चॉइस whether you want to record a voice memo and send your entry or you want to call me and share your story on the air. Of Phanisha Radio. Phanisha Radio, you are live on air. What is your name?
1: Hello.
0: Yes, so you are live on air. अपना नाम बताइए.
1: Hi, this is Sonam here. I have a story with my sibling.
0: Yes, Sonam, बताइए. 60 seconds you have. Go ahead.
1: Okay. तो मुझे एक बड़ा भाई है जो कि मेरे से 10 साल बड़े है, बट आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली. तो जब मैं बॉर्न हुई थी तो आई वॉज लाइक फॉर हिम लाइक अ डॉटर, आई वॉज लाइक फॉर हिम. तो वो उसने एक बार जब मैं अराउंड 4-5 मंथ्स की थी तो इंडिया में जैसे सब लोग मिलने आते हैं तो बच्चे को देखते हैं, हाथ लगाते, गोद में लेते, तो ही वॉज सो अपसेट एंड सो पॉजिटिव अबाउट मी कि उसने मुझे बेड के नीचे छुपा दिया एंड मैं वहीं पे 2 घंटा सो गई. और मेरी मॉम सब घर में ढूंढ रही है कि कहाँ गया बच्चा, और मैं 2 घंटा अंदर ही सोती रही. एंड देन व्हेन ही वो खेलने चला गया, खेल के आने के बाद मम्मा पैनिक हो रही कि उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं थे.

0: कि
1: ऑफ
0: पापा को
1: कोर्स.
0: कैसे कॉल करें एंड ऑल दैट, और भैया से बात कर रही कि यार अपनी दीदी खो गई, एंड इज लाइक नहीं मैंने उसको छुपा के बेड के नीचे रखा
1: Well,
0: है.
1: that was so sweet of him, but kind of very dangerous. That is lovely. That's so sweet. अच्छा सोनम, आप वेट कीजिएगा, मैं ऑफ एयर आपको लेके आपका इन्फॉर्मेशन लूंगी. प्लीज होल्ड ऑन. ओके,
0: थैंक यू.
1: या ऑल राइट गाइज, दैट इज बाय फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. मैं आपसे मिलूंगी अब कमिंग मंडे. ऑफकोर्स मंडे थ्रू फ्राइडे मैं आपके साथ होती हूँ, 2:30 PM टिल 5 PM एवरी डे. Weekday, I am with you with your afternoon drive time with Suneri Kiran. Have a lovely rest of your weekend.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
9: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
12: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
13: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
14: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
15: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
14: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
15: वेट, व्हाट?
16: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
17: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
16: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
18: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
19: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
18: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
19: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, दिल से निकली है ना ये बात. ऐसा होता है ना कि हम पूरा हफ्ता काट लेते हैं मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे आते से ही दिल से एक बात निकलती है और दिल तक पहुंचती है कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. नो फिल्टर, नथिंग दैट कैन नॉट टेक्स अवे फ्रॉम द इमोशन, बट द इमोशन इज सेम थ्रू आउट ऑल आर हार्ट्स, ऑल माई बंधुज. That are you. Thank God it's Friday. I hope you are having a lovely time on Friday. आ चुकी हूँ Friday को 5 से 8 street from the heart अपना show लेकर, जिसका नाम ही है Thank God it's Friday. क्योंकि हमें पता है इस समय वो vibe ही it is about Thank God it's Friday. And जैसे कि मैंने आते ही आपको बोला आप है मेरे हो बंधु, so सही कहा.
1: Audition?
0: क्योंकि
1: yeah?
0: This one for you. My dedication to all my lovely listeners.
2: मत करो.

0: Yes! We killed it!
1: Totally!
2: अगले क्या?
1: बंधु हो या बंधु 2.0 हो, बंधु बंधु ही रहता है। आप मेरे दोस्त आज हुए कल।
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
8: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
14: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
13: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
14: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
13: इंडिया तक।
14: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
8: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
15: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
8: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
16: अरे यार, घर मिल गया।
17: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
8: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
17: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
8: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
18: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th, from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
8: First 5 customers shopping for $100 $50 gets a free 10 gram silver coin.
18: India Bazaar, the people's store.
10: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
8: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
1: वेलकम, स्वागत है, सलाम अलैकुम, सस्रियाकाल, के आमो नाचो, केम छो। ये शो जो आता है फ्राइडे के फ्राइडे 5-7 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मेरा शो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस शो पर। वैसे फ्राइडे के फ्राइडे एक दिल में नहीं दिमाग में बात आ रही थी, जब दिल में आती है तो आप उसको दिल समझ के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, बट दिमाग में आती है तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। वही बात तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि यार किसने ये सोचा होगा कि आज ही फ्राइडे है। क्या फर्स्ट डे जब से यू नो दुनिया बनी है किसी ने ये नोट करके रखा है कि ये हुआ संडे, ये हुआ मंडे, ये हुआ ट्यूसडे और आज जाके फ्राइडे है। आई मीन हो नहीं सकता कि आज सैटरडे हो या आज ट्यूसडे हो। आई मीन हु केप्ट दिस कैलेंडर फॉर सो लॉन्ग। कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया ना मैंने। चलिए दिल ही लगा लेते हैं, ये गाना आपके लिए। टू मच दिमाग क्या करूँ,

यस्टरडे का गाना फिर 2.0। यार ये तो 2.0 क्या की शाम बनती जा रही है। आंखों से तूने 2.0। जिंदगी में भी ऐसा होता है ना, हमेशा किसी को एक ही बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। आपके दोस्त हो, आपके कलीग्स हो, या आप किसी को जानते हो, बहुत बार होता है हम एक जजमेंट बना लेते हैं किसी के लिए। पर देर इज ऑलवेज अ 2.0। यू कैन ऑलवेज चेंज, हमेशा गुंजाइश होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई हैव ऑलवेज सीन दैट पीपल कीप चेंजिंग। तो अगर आपने किसी के लिए ऐसी धारणा बना रही है, तुम तो यही हो, ऐसा कोई डायलॉग जब बोलता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बिकॉज आई फील, हेलो, पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड पीपल चेंज एज वेल, एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड चेंज। सो अगर आप अगर एक छोटा सा काम कर सके जिंदगी में, कि कभी जज फुल्ली मत करे किसी के पास से, जो उस समय जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसे सोचकर उसको डील करें, या उसे उस समय वैसे टैकल करें, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दैट बैकग्राउंड विद दैट पर्सन, हेल्प यू अ लॉट। इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू विन फ्रेंड्स, इट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रेजुडिसेस दैट यू हैव फ्रॉम विद पीपल, एंड इट विल हेल्प यू बी अ नाइसर पर्सन। सोच के देखिए। चलिए एक और 2.0 आपको सुना देती हूँ, एक और 2.0 गाना। दिस ऑल्सो वन मोर टाइम, सेम सॉन्ग इन अ डिफरेंट फॉर्मूला।

चुनर चुनर 2.0 वंस अगेन, ये जो है जवानी तो इश्क होना है, वही नाम वापस से आया। डेविड धवन की फिल्म वापस से आई इस रूप में, विच वॉज विथ हिज सन वरुण धवन एंड मृणाल ठाकुर। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो। तो होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ को ये सोच के याद रखना चाहिए कि वो चीज़ हमेशा बदलती रहती है, और बदलने में तो नहीं पता पर खाने में जो स्वाद हमेशा A1 रहे ना बदले, उसके बारे में बता सकती हूँ। फ्लेवर लाउंज है हमारे ही शहर में एंड वो है फ्रिस्को में। दे आर सर्विंग ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे। यस, ये ब्रांड न्यू है, फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेस, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल्स एंड फ्रेश फ्लेवर्स यू विल कीप गोइंग बैक टू। और फिर कितने में पता है? सिर्फ 24.99 पर पर्सन। सो आप 24.99 बस दीजिए और भर पेट खाइए, आज के लिए भी शाम के लिए भी, दोनों दोपहर और शाम दोनों का खाना एक ही बार, एंड देन यू कैन हैव लाइट डिनर। I am just giving you a suggestion, but you can be eating just for the lunch. Enjoy the buffet on Friday and Saturday from 11 a.m. to 3 p.m. Ya phir Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. Take your family and friends. Make your weekend delicious at the Flavor Lounge. Address aap likh lijiye, 5855 Preston Road, Frisco, the Flavor Lounge. Good food, great memories. सुन रहे हैं आप 104.9 FM फन एशिया रेडियो, आपका रेडियो स्टेशन जो आपका फेवरेट होना चाहिए सुबह शाम दिन रात रोजाना हर हफ्ते। हम आते हैं हंसते हंसते और बस चाहते हैं आपकी वो वाली एक खास मुस्कान जिसको देखकर ही बस दिल से निकलता है एक ही बात, वाओ।

0: वाओ, सुन रहे हैं 104.9 FM फनीचर रेडियो। टोटल वाओ की फीलिंग तभी आती है जब ऐसे निकले वाओ। एंड ये फिल्म की तो ऐसी ही बात थी कि दिस सॉन्ग रियली बिकेम अ बिग बिग हिट एज द वाओ सॉन्ग। पता है, गोल वाज नेवर टू हैव अ परफेक्ट हेयर, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट आंसर्स, अ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। इंस्टेड हमारे लाइफ का गोल क्या होना चाहिए पता है? स्लीप अ लिटिल, मूव अ लिटिल, लाफ अ लिटिल, फॉरगेट थिंग्स ओकेजनली। फिर देखिए, ये वाव वाला जो फीलिंग होगा ना, आप ही की जिंदगी में आएगी। क्योंकि लाइफ ना प्रोजेक्ट नहीं होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए कि लिव इट अप, लिव इट अप। एंड हम उसको प्रोजेक्ट बना के छोड़ देते हैं और इतना उसमें घुस जाते हैं कि यार सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो फिर बाहर ही नहीं निकल सकती। बट वॉट अबाउट दैट, यू नो, मस्ती से फुल फ्लेडेड दिल खोल के हंसना, या दोस्तों के साथ वक्त बिताना, या फिर अच्छे से सोना, बस तान के अच्छे से सोना, और कभी कभी कुछ लोगों को माफ़ भी कर देना। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हम जो वो लगा के बैठ जाते हैं ना दिल में कि हम परफेक्ट हैं, और हमारे साथ ऐसा कोई ना करे और हम किसी को माफ नहीं कर सकते। दैट इज टफ एंड दैट रियली गिव्स योर हार्ट द एक्स विच यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम, और उससे बहुत जल्दी निकला जा सकता है। बस निकलने की देरी है और क्या। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एजा रेडियो। मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता और रहूँगी आपके साथ 8 तक, क्योंकि 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहता है मेरा ये शो एवरी फ्राइडे के फ्राइडे, बिकॉज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।
1: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
0: यस, ट्रेन फनेशन।
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest. Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
8: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid Cities, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं, तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
1: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
2: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
11: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
7: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
0: वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है ये बहुत ही बेहतरीन शाम, विच इज़ योर फ्राइडे इवनिंग। द वाइब इज़ ऑन, द वीकेंड वाइब इज़ ऑन, और चाहे जितने भी थके हों, ये जो माहौल होता है शाम का, इट जस्ट फील्स दैट द वीकेंड इज़ देयर। और मैं आ जाती हूँ उसी समय टू गिव दैट ऐलान कि द वीकेंड हैज़ बीन ड्रॉप्ड, एंड दैट इज़ ड्रॉप थ्रू दैट शो विच इज़ योर शो ऑन फ्राइडे।

सुपर, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, तो बता ही दिया है मैंने. और था फ्राइडे के फ्राइडे कुछ न कुछ ब्रांड न्यू गाने आते हैं, ब्रांड न्यू फिल्मों का ऐलान होता है. तो ये ऐलान करती हूँ, आवारापन टू हैज़ बिन अ मूवी दैट इज़ ब्रॉट टू यू बाय फन एशिया फिल्म्स. सो दैट इज़ अ न्यू मूवी कमिंग इन. चलिए उसका गाना सुन लेते हैं.

ही नाजो से पाली हुई हमारी बन्नो फिल्म है. सो दिस हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज़ गॉन बिहाइंड इनटू इट एंड नाउ इट इज़ releasing. Film industry ke bare mein agar batau, it has been a very eventful day in South Indian film industry today with several interesting developments that have taken place, from new announcements and release plans to trailer launches and casting updates. Many stories grab the attention of fans across so many languages, Tamil ho, Telugu ho, Kannada ho, Malayalam ho, lekin हिंदी फिल्म के बारे में अब बताऊंगी. एक बहुत ही खास खबर साउथ इंडियन फिल्म और सलमान खान को लेके आई है. लेकिन अभी एक गाना सुनते हैं, उसके बाद बने रहिए मेरे साथ और बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में आफ्टर दिस लिटिल सॉन्ग.

शैम्पेन, ये गाना है अल्फा फिल्म से, एंड अल्फा इज व्हाट यू आर लिसनिंग टू, सुन रहे हैं 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. तो साउथ इंडियन फिल्म्स के बारे में बता रही थी. दिस टुडे अ लॉट ऑफ फिल्म्स हैव बीन अनाउंस, और उस अनाउंसमेंट में हमारे बॉलीवुड के लिए एक फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ. सलमान खान एंड जैकी श्रॉफ एक फिल्म लेकर आ रहे हैं. यस, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग आउट इन ईद ऑफ 2027, सो नॉट दिस ईयर. एंड इसमें जैकी श्रॉफ विल प्ले अ पिविटल रोल एंड हैज़ ऑलरेडी बिगन शूटिंग विद सलमान खान इन मुंबई. और कॉन्ट्रारी टू अर्लियर स्पेक्यूलेशन, ही विल नॉट पोर्ट्रे द मेन विलन. एक फिल्म की आ रही थी बात कि ही विल बी पोर्ट्रेइंग एज अ विलन बट अ की कैरेक्टर इन द स्टोरी, एंड दैट इज जैकी श्रॉफ. एंड येट अनटाइटल्ड फिल्म इज करंटली इन प्रोडक्शन एंड इज टारगेटिंग टू बी रिलीज ऑन ईद 2027. सलमान खान हो और ईद ऐसी सुनी सुनी जाए, ऐसे हो नहीं सकता. सलमान मोस्ट ऑफ हिज ब्लॉक

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Yes, it is how it is, which is Funasia Radio.

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे दोस्तों, और फ्राइडे के फ्राइडे ये पांच से आज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज द शो दैट आई होस्ट और विच इज थैंक गॉड इज फ्राइडे. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद. तो पता है इसी हफ्ते जो अब बर्थडेज मनाए जाते हैं, हमारे स्टार कलाकार को मुबारकबाद दिया जाता है. सो उसमें है मेरी वेरी वेरी फेवरेट स्टार का जन्मदिन, एंड शी इज ऑल्सो लियो लाइक मी, आई एम अ लियो. ऑगस्ट 5th को जन्मदिन होता है काजोल का. कितने जानते हो आप बॉलीवुड की इस आइकॉनिक हीरोइन को? कितने नाम तो जा पता ही होगा, काजोल है, लेकिन उनका सरनेम मुखर्जी है. पता है लिटरली उनके डीएनए में एक्ट्रेस तनुजा है और शोमू मुखर्जी फिल्म मेकर, एंड उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर रतन बाई ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडियन सिनेमा. ये है काजोल, जो 16 साल की कम से उम्र में ही कदम रख दिया था इन्होंने डेब्यू अपनी फिल्म बेखुदी, जब वो सिर्फ स्कूल में थी. और होना तो होगा ही ना, क्योंकि उनके डीएनए में जो फिल्म है, बाजीगर जो है गेव अस द आइकॉनिक शाहरुख खान काजोल पेयर. बट काजोल पता है वॉज रिपोर्टेडली नॉट द ओरिजिनल फर्स्ट चॉइस फॉर द रोल ऑफ प्रिया. इस पे आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है. 9722355555 फोन उठाइए, नंबर दबाइए फॉर अ गिव अवे. मैं बताऊंगी गिव अवे क्या है, लेकिन मुझे आप बताइए कि काजोल नहीं थी बाजीगर की फर्स्ट चॉइस ऑफ हीरोइन तो कौन थी? 9722355555 स्टूडियो का नंबर.

0: मिस काजोल, वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे 5th of August को रहता है उनका जन्मदिन। और मेरा क्वेश्चन था, जो फिल्म थी बाजीगर, जो उनकी शाहरुख खान की फिल्म थी, उसमें शी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस, तो कौन थी? चलिए देखते हैं अपने कॉलर्स को। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: शाहरुख खान की फिल्म थी।
0: कैन यू स्विच ऑफ द रेडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन प्लीज।
2: ये श्रीदेवी।
0: व्हाट इज योर नेम?
2: फर्स्ट चॉइस आनंद।
0: आनंद, थैंक यू आनंद साहब। श्रीदेवी आप बोल रहे हैं फर्स्ट चॉइस थी। ऑलराइट, गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
3: हेलो।
0: यस, हाय, टेल मी व्हाट्स द आंसर।
3: श्रीदेवी वाज द फर्स्ट चॉइस।
0: बाजीगर, ऑलराइट, श्रीदेवी, तो क्यों उनको बदल दिया गया? यू हैव एनी आंसर टू दैट?
3: आई डोंट हैव आंसर, बट आई वुड लाइक टू ऐड One more interesting fact of Kajal was she got married on March 24, 1999. Because I'm a big fan of Kajal, so I know most of the things.
0: All right, so you know her wedding anniversary, so that's why. So cute.
3: Yeah.
0: So what is your name?
3: Amrit.
0: Amrit. Thank you, Amrit saab. Main batati hoon winner kaun hai. Good evening, Faisal Radio. You are live on air.
4: Yeah, I think by now you might have got the answer. It's Sridevi.
0: What is your name?
4: आरती।
0: इस ये वाली फिल्म के श्रीदेवी के रोल के बारे में और कुछ पता है? व्हाई वाज शी चेंज्ड
4: फॉर बाजीगर थिंग?
0: या
4: नो, आई डोंट हैव मच आईडिया अबाउट दैट।
0: ऑलराइट, कीप लिसनिंग, आई विल अपडेट। ओके, थैंक यू सो मच आरती। आई विल आल्सो अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। सो यस, थी एक्चुअली श्रीदेवी, लेकिन श्रीदेवी को भी डबल रोल दिया गया था इसमें। शिल्पा शेट्टी थी और काजोल थी, राइट, इन बाजीगर। एंड देन देयर वाज नेगेटिव रोल ऑफ शाहरुख खान, पर पहले ये सारे स्टार्स नहीं थे, स्टार थी श्रीदेवी, जिनको डबल रोल दिया गया था। टू सिस्टर्स एंड बोथ हैव द सेम लुक, बोथ आर श्रीदेवी। पर फिर ऐसा हुआ कि शाहरुख खान थे फिल्म में, तो शाहरुख खान बाद में आए थे, पहले थे अनिल कपूर। लेकिन जब शाहरुख खान स्टेप इन हुए, तब लगा यार श्रीदेवी तो डोमिनेट कर जाएंगी, ब्रांड न्यू एक्टर शाहरुख खान हु इज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल उनको। तो दैट्स व्हाई दे स्प्लिट द रोल इनटू टू, एंड वन वाज गिवन टू काजोल, वन वाज गिवन टू शिल्पा शेट्टी, बट आफ्टर श्रीदेवी डिक्लाइन डूइंग दिस रोल। सो अनिल कपूर, श्रीदेवी उस जमाने में टॉप स्टार्स, वर रिप्लेस बाय काजोल एंड शिल्पा शेट्टी। और यहाँ पर दे द शाहरुख खान, शाहरुख खान वॉज फॉर अनिल कपूर। दैट वॉज द सुपर ड्रॉपिंग ऑफ वन ऑफ द स्टार्स। सुन रहे 104.9 FM फनीचर रेडियो। एंड यू नो व्हाट, बाय बाय मिस्टेक, ये जो शिल्पा शेट्टी, काजोल वाज द प्रिया एंड प्रिया वाज श्रीदेवी बिफोर दिस। और जो मेरे विनर हैं और क्या जीतने वाले हैं, आप सुनते रहिए, मैं एक और गाना बजा रही हूँ, उसके बाद आपको विनर का नाम बताऊँगी। काजोल एंड हैप्पी बर्थडे to her, and I know a lot of you are fans of Kajol out here, and that's the excitement that her jodi with Salman Khan ho, Shah Rukh Khan ho, create karta hai. And jab hum unke bare mein baat karte hain, to ye wala gana to was a very very beautiful song she and Shah Rukh had, even in the later years of her life.

0: सुपर, ये तो गेरुआ गाना, सच अ गेरुआ कलर का फुल सॉन्ग। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गाने का, गन्ने का जूस, आई एम सो सॉरी, गाने बजाते बजाते गन्ने को ही गाना पढ़ लिया मैंने। केटरिंग सर्विसेज एंड इवन एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, यू नीड टू विजिट फूडिस्तान इन ऑबरी। पता है फूडिस्तान ब्रिंग्स एवरीथिंग देसी ऑल इन वन प्लेस, प्लस दे ऑफर लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटीज ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी टू एन ऑर्डर ओवर।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन, सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641.
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
8: विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस.com और कॉल 214-666-6262.

वेलकम बैक सेलिब्रेटिंग काजोल्स बर्थडे ऑन फनेजा रेडियो टुडे। अगस्त 5 को जन्म होता है इनका एंड यू आर लिसनिंग टू थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

सुपर, ये वाला गाना कितने बार भी सुनो आप, एंड दैट इज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कहते हैं। ये भी एब्सोल्युटली एक कल्ट फिल्म बन गई थी आफ्टर शोले। शोले वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्ट फिल्म, और रोमांटिक फिल्म में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर वी एज फनेशिया डिड वन इवेंट व्हेन वी हैड अ थिएटर्स, जहाँ पर हम लोगों ने शोले और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वी हैड यू नो ओपन दीज टू फिल्म्स फॉर यू गाइज टू वॉच फ्रॉम आर फनेशिया फिल्म डिविजन, एंड इट वॉज अ फुल हाउस, वी हैड सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एवरीबडी केम आउट टू सी वॉच द मूवी इन द बिग थिएटर्स, दैट वॉज सुपर डुपर। सुन रहे हैं 104.9 FM, और काजोल जो आप लोगों ने सही जवाब दिया मुझे कि बाजीगर में काजोल वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस बट श्रीदेवी वॉज द फर्स्ट चॉइस एंड शी वॉज सपोज टू प्ले अ डबल रोल इन दैट फिल्म, पर फिर काजोल वॉज द चॉइस दैट अब्बास मस्तान हैड टेकन। सो अमृत, अगर आप सुन रहे हैं तो यू आर द विनर एंड यू गिव मी अ कॉल, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। योर आंसर वॉज करेक्ट, फूडिस्तान का गिव अवे आपको मिल रहा है, अ फ्री आइटम फ्रॉम दी वाइब रेस्टोरेंट, द अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान, एंड फूडिस्तान इज इन ऑबरे। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए और मुझे बताइए आपके इन्फॉर्मेशन सो दैट आई कैन गिव यू दिस वन राइट हियर राइट नाउ। अ वेरी वेरी हैप्पी 52nd बर्थडे टू नन अदर देन आर वेरी फेवरेट काजोल।

0: Lovely. Celebrating Kajol today on my show. 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं. बहुत कुछ हो रहा है. 15th of August Independence Day आ रहा है and we are celebrating here. Celebrate India's 80th Independence Day at INT's Anand Bazaar 2026. And this is happening on Saturday, August 15th from 2 p.m. onwards at the Comerica Center फ्रिस्को में है ये. एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स कम्प्लीटली इनडोर. ओ माई गॉड, ये गर्मी से बचेगी जान. कम्प्लीटली इनडोर्स है. इट विल बी सुपर्ब, फ्री फॉर एवरी वन. आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं ऑथेंटिक इंडियन फूड, अ ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग. बस अपनी पूरी फैमिली के साथ आ जाइए, दोस्तों को भी ले आइए. इट्स अ फुल फ्लेजेड डे, अ मेला डे यू कैन से. एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सस बिगेस्ट इंडिपेंडेंस डे एंड दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. INT आनंद बाजार 2026. बहुत ही ऐतिहासिक दिन होता है ये. एंड अ लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट एंड यू कैन बी गेनिंग एंड एक्सपीरियंसिंग सम amazing experience when you be there.
1: Kahan, kahan,
0: brand new gana.
1: Kahan.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
1: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
2: Register free now at meditation.funasia.net.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल। Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
3: वेलकम बैक 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं आपके होस्ट नवनीता और ये 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एंड Definitely, we can rightly say the vibe is on for the weekend and thank God it's Friday. Kaun kaun yahan par dog lovers hain? The furry babies who we love so much. I know, America mein especially that is very, very prominent aur har ghar mein aapko dogs nazar aayenge. Not so much hamare desh mein. But ye videsh mein everybody has, kids are moving out, you are becoming empty nestlers, aur uske baad, dogs are your best friends. And so many homes in COVID got dogs. So many homes now are very, very attached to dogs. Arey, itne sare dogs ke baare mein main kyun bol rahi hoon? Brand new film aa rahi hai. Chale, gaana sunte hain, fir uske baare mein bataungi main aapko. Oh, my dog. Oh, my dog.

क्यूट क्यूट ओ माई डॉग है इस गाने का और फिल्म का नाम भी एक्चुअली, एंड इट्स अबाउट अ यंग चाइल्ड हु फॉर्म्स एन अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड विद अ स्ट्रे डॉग, एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर दैट रिवील्स द प्रोफाउंड वेज एनिमल एंड ह्यूमंस कैन हील ईच अदर्स हार्ट. अच्छी बात यह है कि इसमें आपको नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी जी, वेरी वेरी नोन फॉर ऑल हिज रोल्स विच ही प्लेड एंड सच अ ब्रिलियंट एक्टर. कैसे भी डिफरेंट से हो वो, लेकिन जिस कैरेक्टर को निभाते हैं और किस ब्यूटिफुली निभाते हैं. सो यस, डॉग्स एज आई सेड, हमारे कंट्री में तो डैलस हमारा शहर हो या फिर हमारा USA द कंट्री, दे आर वन ऑफ आर बेस्ट फ्रेंड्स इन अ लोनली हाउस. बट उनके साथ साथ ना बहुत कुछ और भी आ जाता है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना आ जाता है. यू नो, वी मूव विदाउट इवन कॉलिंग इट एन एक्सरसाइज व्हेन वी टेक देम आउट फॉर अ वॉक. दे ऑल्सो टीच अस हाउ टू कम्युनिकेट, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू देयर मूड्स, थ्रू देयर आईज, ईयर्स, व्हेन दे वैग देयर टेल एंड टाइनी चेंजेस इन देयर बिहेवियर. जो डॉग्स को समझ लेते हैं ना, वो लोग बहुत लोगों को भी समझना सीख लेते हैं. आई थिंक दे आर गुड थेरेपी, गुड फ्रेंड्स and complete loyal buddies to have dogs. So this Oh My Dog is a brand new movie coming all for all you lovely dog lovers. Aapke liye sun rahe hum 104.9 FM Fun Asia Radio, 5 se 8 straight from the heart with your host Navneeta.

चेन्नई एक्सप्रेस ऑसम, बहुत ही कमाल थी इसमें दीपिका पादुकोण. यू नो यू कैन एक्चुअली वॉच चेन्नई एक्सप्रेस सो मेनी टाइम्स. सो ड्राइव 104.9 FM फन एशिया रेडियो. दोस्तों पता है दिस रक्षाबंधन सच अ ब्यूटिफुल ओकेजन, राइट? बहन और भाई का टूट बंधन. Phanasia Radio and Choctaw Casino and Resort want to hear your most

Choctaw Casino and Resort. Do want to hear your most unforgettable memory with your brother or sister. कितने सारी अमेजिंग मेमोरीज होती है जब हम ग्रो अप होते हैं. यू नो ऑल दोज नोक जोक्स अ ब्रदर एंड सिस्टर कैन ओनली हैव. एंड आई एम श्योर इन फ्रंट ऑफ योर आईज ऑल्सो देर सो मेनी किड्स ग्रोइंग अप टुगेदर विथ सो मच नोक जोक. लेकिन ये ब्रदर सिस्टर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 2148377147 एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट डुरांट. फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आप पहुंच सकते हैं फर्नीचर रेडियो सोशल मीडिया पेज पर चकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट डुरांट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply, but please definitely you have to send this. Or, you know, there's another chance of you telling me about your experience with your brother or your sister right here, right now on Fun Asia Radio. 972-235-5555 is studio ka number. Abhi abhi aap bata dete hain, to abhi abhi main record kar lungi. Aur abhi abhi aap enter ho jayenge. Ye bahut hi khas, khas... यू नो कॉन्टेस्ट में बहुत सारे अमेजिंग एक्साइटिंग प्राइजेज हैं. डेली प्राइजेज हैं, डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज, वाओ. और ग्रैंड प्राइज है एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चकटाओ कैसीनो. सो देयर इज सो मच. करना क्या है, बस दिल से अपनी बात बतानी है. आपका और आपके सिबलिंग, योर ब्रदर और योर सिस्टर का कोई अमेजिंग सा किस अमेजिंग सी स्टोरी, फोन उठाइए, नंबर दबाइए. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर.

0: सुपर इश्क विश्क रीबाउंड से लिया गया ये गाना 2024 की फिल्म है एंड दिस वाज ब्रॉट टू यू इन अमेरिका बाय फनीजा फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन. या फनीजा फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन आप ही का वेरी खास कनेक्शन है. व्हेन यू आर सच बॉलीवुड फैंस, वी आर सच बॉलीवुड फैंस, रेडियो के साथ मूवीज भी ले आना इज अ बिग पार्ट ऑफ फन एजा एंटरटेनमेंट और फन एजा नेटवर्क. आज से सुन रहे हैं 104.9 FM फन एजा रेडियो. वैसे शुक्रिया, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए हमारे सारे रेडियो स्टेशंस को, वेदर इट इज फन एजा रेडियो और वनक्कम हमारा तमिल रेडियो या फिर रेडियो संगम जो तेलुगु रेडियो स्टेशन है. वी हैव रेडियो पंजाब और कारवा एज वेल. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा. इस छोटे से ब्रेक के तुरंत बाद लौट के मिलते हैं ब्रेक के उस पार एंड देन वी हैव सम अमेजिंग सॉन्ग्स गल हिंदी हिंदी बोल ऑल्सो कमिंग अप. दैट इज हाउ वी कनेक्ट ओवर हिंदी ऑन फनीजा रेडियो. एक छोटे से ब्रेक के बाद.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges. Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
6: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
5: Kaise?
6: Page 3 eatery?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: Matlab great food, great drinks, and great company, yani ki main.
7: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं.
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं.
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं.
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
11: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
14: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, X-ray, CT scan, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
15: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स अकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डाल.